0: Tune in anywhere. Radio Man Bhavan 90.8 FM, always heart touching.
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। पिछले एपिसोड में हमने कबीर के उस अद्भुत दर्शन को समझा जहां वे गुरु गोविंद से भी पहला स्थान देते हैं, क्योंकि गुरु ही वह सेतु हैं जो हमें परमात्मा से मिलाता है। लेकिन सवाल यह है कि यह गुरु चमत्कार करता कैसे हैं? क्या वह केवल कान में कोई मंत्र फूंक देता है? नहीं, कबीर कहते हैं कि गुरु तो एक योद्धा है और उसका ज्ञान एक बाण है। आज का एपिसोड गुरु के इसी शब्दवेध के बारे में है। श्रोताओं, आज हम कबीर के उस बाण की बात करेंगे जो शरीर को नहीं बल्कि अहंकार को मारता है। अक्सर दुनिया में हथियार जान लेने के लिए उठाए जाते हैं, लेकिन कबीर के यहाँ सद्गुरु ने हथियार जान देने के लिए उठाया है, एक नया जीवन देने के लिए। आज का दोहा गुरु के उसी शब्दवेद का दर्शन है। सतगुरु लई कमान करी बाहन लाका तीर,

0: सतगुरु लई कमाण करी बाहर लागा तीर, एक जू बाह्य प्रीति सू भीतरी रहा शरीर। इस दोहे में कबीर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सदगुरु अपनी साधना का धनुष उठाते हैं तो वे उपदेश नहीं देते, वे शिष्य की सोई हुई आत्मा पर चेतना का प्रहार करते हैं। यहाँ धनुष का अर्थ वह माध्यम है जिससे सत्य का संप्रेषण होता है, और बाण है वह महावाक्य जो गुरु के अनुभव की मिट्टी से तपकर निकलता है। दर्शन की भाषा में कहें तो गुरु जब बाण चलाता है तो वह शिष्य के कान के पर्दे नहीं बल्कि उसकी बुद्धि की गुहा को बेध देता है। लेकिन कबीर ने एक विशेष शब्द का प्रयोग किया है, प्रीति। दर्शन यह कहता है कि रूखा ज्ञान केवल बोझ होता है, लेकिन जब ज्ञान प्रेम के रस में डूब कर आता है तब वह मर्मभेदी हो जाता है। गुरु का वह एक बाण शिष्य के भीतर के मैं अर्थात अहंकार की हत्या कर देता है। और चमत्कार देखिए, यह बाण शरीर से बाहर नहीं निकलता बल्कि भीतर रहया शरीर, वह भीतर ही ठहर जाता है। इसका अर्थ है कि वह ज्ञान अब कोई बाहरी सूचना नहीं रही, वह शिष्य का स्वभाव बन गया है। यह बाण अब शिष्य के रक्त में, उसकी सांसों में और उसके अस्तित्व में समा गया है। जैसे लोहा आग में तपकर खुद आग हो जाता है, वैसे ही गुरु का शब्द बाण खाकर शिष्य खुद शब्द हो जाता है। आज का चिंतन इस दोहे से ये निकलता है कि दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि किसी महापुरुष की कोई एक बात आपके भीतर जाकर अटक गई हो, जिसने आपको अंदर से हिला दिया हो। दर्शन कहता है कि वही क्षण आपके पुनर्जन्म का क्षण है। सद्गुरु का वह बाण आपको घाव तो देता है, पर वह घाव ही आपकी मुक्ति का द्वार बनता है। जाते जाते तो आज तलाश कीजिए उस शब्द की, उस बाण की, जो आपके भीतर के अंधेरे को चीर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट।
2: बा तथागता, तू मान्य केलास कार्यकारण भावाचा अत्यंत महत्वपूर्ण नियम, तसेच त्याचे उपसिद्धांतही। तथापि कार्यकारण भावाशी ईश्वरवादी दृष्टिकोन, ईश्वराचे पूर्वनियोजन तू केलेस अमान्य, आत्म्याचा फेरा तू केलास अमान्य, आणि मोक्ष व मुक्तीऐवजी स्वीकारलेस वैज्ञानिक सिद्धतेचे तत्व निब्बाण म्हणून। तुझ्या शिकवणुकीचा मध्यबिंदू मन आहे, सर्वांच्या अग्रभागी मन, मनाचे आकलन, त्यामुळे महत्त्वाचे आकलन मनाचे संस्कार। माणसात निर्माण होणाऱ्या किंवा बाह्य परिणाम करणाऱ्या चांगल्या वाईटाचा परिणाम होतो मनावर। जे असते वाईट तेही उत्पन्न होते मनातून, आणि जे असते चांगले तेही उत्पन्न होते मनातून। अशुद्ध मनाने झालेले बोलणे वाईट कर्म नेतात सोबत, बैलाच्या पाठोपाठ जाणाऱ्या बैलगाडीच्या चाकाप्रमाणे। म्हणून मनाची शुद्धी, मनावरील संस्कार, चित्तशुद्धी हा आहे धर्माचा सार। त्यामुळे मन सांभाळावे, विवेकी बनवावे आर्य अष्टांगिक मार्गाने। खरा धर्म हा धर्मग्रंथात नसतोच मुळी, तो असतो आचरणात मनाच्या चित्तशुद्धीसह। बा तथागता, माणसाच्या उत्कर्षासाठी तू शील मार्गाला म्हणजेच सद्गुणांच्या मार्गाला महत्त्व प्रदान केलेस। शील संवर्धनासाठी तू उद्घोषिले 10 गुण, शील, दान, उपेक्षा, नैष्कर्म्य, वीर्य, शांती, सत्य, अधिष्ठान, करुणा आणि मैत्री। शील म्हणजे नीतिमत्ता, मनाचा असावा कल चांगल्या गोष्टींकडे, वाटावी त्याला लाज अपराध करण्याची, शिलालाच म्हणावे पाप भिरुता। नैष्कर्म्य या सद्गुणात होतो अहिक सुखाचा त्याग, अन टाळली जाते उतावीळ अवस्था, परतफेडीच्या अपेक्षेविरहित। केले जाते दान दुसऱ्याच्या भल्यासाठी, भले प्राणत्याग करावा लागला तरी। योग्य प्रयत्नाने होते वीर्य पुष्ट, तेव्हा हाती घेतलेले कर्म सामर्थ्यानिशी सर्व करावे पूर्ण, वीर्यवान होऊन। एकाग्रतेच्या आकलनाने होते प्राप्त ज्ञान, समजतो त्यातील विवेक, त्यामुळेच ज्ञान साधनेच्या विवेकाने पुष्ट होते औदासीन्य व अलिप्ततेमधील फरक, आचरणातून नोंदवण्याचे सामर्थ्य। द्वेषाने द्वेष शमत नसतो, तो शांत होतो फक्त क्षमाशीलतेने, आणि शांती म्हणजेच क्षमाशीलता। दृढ निश्चय असतो अधिष्ठानात, तशी प्रेमपूर्ण दयाशीलता असते करुणेमध्ये। शत्रूविषयी देखील असतो प्रेमभाव, मैत्रीभाव, बंधुभाव बाळगणे म्हणजे मैत्री होय। आणि उपेक्षा म्हणजे निराळी अशी अलिप्तता औदासीन्याहून। उपेक्षा म्हणजे अनासक्ती किंवा आवड नावड नसलेली स्थिती असते मनाची, फलप्राप्तीने विचलित होत नाही आणि निरपेक्षतेने प्रयत्नरत राहते उपेक्षा। अशा शीलमार्गाच्या संवर्धनाने पुष्ट होते मन, बनते विवेकी, सुसंस्कारित माणूस करते उभा संस्कृती संवर्धन करण्यासाठी। तसे सत्य आणि ज्ञान संवर्धन असते विवेकी बुद्धिवादासाठी, त्यातल्या गुणसंपन्न मानवासाठी, संस्कृतीच्या शुद्ध प्रवासासाठी।
3: आपण ट्यून केले रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
4: आपण ट्यून केले आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आपला खानदेश, आपली माणसं।
5: नमस्कार, ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने क्या किया, ये पसायदान का मतलब क्या है इसके बारे में जानकारी ली, एक कथा भी सुनी हमने, और ये पसायदान क्या मांगना है, भगवान से क्या मांगना है इसके ऊपर चर्चा भी की, कहानी सुनी, चिंतन किया। ऐसे ही हमारे माउली ने, ज्ञानेश्वर महाराज, इन्होंने भगवान से, विश्वात्मक देव से, विश्वात्मक भगवान से पसायदान मांगा है। पहले पहले जब मैं उसे पढ़ता था, उसको चैंट करता था, बोलता था मुख से, क्योंकि सिर्फ 9 लाइन है, 9 चरण है, 9 ओवी है, और पढ़ने में और बोलने में कितना वक्त लगता है, 3 मिनट भी नहीं लगते। अभी इस 3 मिनट में वो जो ओवी है, जो शब्द है, उसका अगर गहराई तक जाके अर्थ नहीं समझेंगे तो 3 मिनट में पूरा हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये राजयोगा का ज्ञान मुझे मिला तो दृष्टि बदल गई, और उसके ऊपर गहराई से चिंतन कैसे करना है इसके बारे में जानकारी मिली। और ये चिंतन करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि माउली ने जो पसायदान मांगा है उसमें इस धरती पर स्वर्ग लाने के लिए मांगा है। कामना जो है, इच्छा जो है, रिक्वेस्ट जो है, या बाप के पास बेटे की डिमांड जो है, वो है इस धरती पे स्वर्ग लाना। आइडिया अच्छी लगती है, लेकिन उसके पहले हमें यह देखना है कि इस धरती पे स्वर्ग लाना मींस क्या है। क्योंकि ये स्वर्ग जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत अच्छा है। हम बोलते हैं ये स्वर्ग सुख है, स्वर्ग हेवन, गो टू हेवन कभी कहते हैं हम लोग। जब गुस्सा आता है तो कहते हैं गो टू हेल, लेकिन जब प्यार आ जाता है तब कभी प्यार से कहते हैं गो टू हेवन नहीं। कहते जरूर है हेवनली ब्लिस, हेवनली हैप्पीनेस, स्वर्ग सुख है। स्वर्ग ऐसी चीज है जहां दुख की कल्पना भी नहीं है, ऐसा समझते हैं। लेकिन जब कोई स्वर्ग में जाता है, या हम कहते हैं यह स्वर्ग पधारा, तब क्या करते हैं, रोते हैं या हंसते हैं? एक्चुअली सही पूछा जाए तो हमें हंसना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह गया है, लेकिन रोते हैं। इसका कई लोगों ने यह भी समझाया है कि बिकॉज वी आर पार्टिंग, हमारा वियोग हो जाता है शरीर से, वो दूर चले जाते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। ठीक है, मैं उसके ऊपर ये बहस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है और यह विषय भी नहीं है, लेकिन मुझे ये कहना है कि यह स्वर्ग, स्वर्ग जो हम कहते हैं, यह स्वर्ग जो है, हेवन जो है, ये इतना अच्छा है, ये कल्पना आई है, मीन्स कहीं ना कहीं पहले होगा। एवरीबडी, और चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, या ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, ये कल्पना जो है स्वर्ग की या जन्नत की या हेवन की, ये तो है। ये स्वर्ग जो है या जन्नत जो है या हेवन जो है, वो पहले कहाँ था? अगर मैं कहूँ पहले इसी धरती पे था, इसी पृथ्वी पे था, और इसी भारत में था। यस, भारत में था, और भारत में था बिकॉज इट वॉज ओनली वन कॉन्टिनेंट। तो ये जो भारत है, मेरा भारत, और यही कल्पना लेके अभी अब्दुल कलाम जी भी आए हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पावरफुल इंडिया इन 2020। उसमें कहीं ना कहीं बेस है, या इसे बेसलेस स्टेटमेंट्स नहीं है, लेकिन वो हमें उसकी गहराई तक जाना चाहिए। और यह स्वर्ग क्या है, इसके ऊपर बहस नहीं करनी है। मुझे यह कहना है कि संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर जी ने जो पसायदान में मांगा है, यह स्वर्ग इस धरती पे लाने के लिए मांगा है। अभी यह स्वर्ग तो मांग लिया उन्होंने, यह स्वर्ग कैसे मांगा है, उसका वर्णन जो है वो पसायदान में है, एक एक लाइन में है, उसके ऊपर भी हम चिंतन करेंगे। और इसी स्वर्ग को हम राम राज्य भी कहते हैं, राम राज्य। गांधी जी का हम कहते हैं, गांधी जी के मन में था कि ये भारत में राम राज्य आएगा। अभी ये राम राज्य जो है, जो हम कहते हैं राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए, उसमें हमें क्या अभिप्रेत है, व्हाट वी थिंक? ये राम राज्य जब कहते हैं तब उसमें रावण है, राम की सीता रावण भगा के लेके जाएगा, मारीच है, लक्ष्मण है, या राम जी का वनवास है? अगर राम राज्य चाहिए हमें, तो ये सब चीजें उसमें अपेक्षित है। डू वी थिंक दैट जब राम राज्य आएगा तो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर, कुंभकर्ण भी होगा, या हमें राम राज्य कुछ अलग ही चाहिए? क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, हम सब कहते हैं इसलिए कहते हैं, लेकिन उसके ऊपर चिंतन नहीं करते, और चिंतन जब करना शुरू करते हैं तब हमें लगता है कि हम थोड़ा हट के जा रहे हैं, कहीं हम उसमें गलती तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे कॉन्शियस को ये कोई चीज छूती है, कोई भाती है, तो वो सही ही हो जाएगी। हमें जो रामराज्य चाहिए, हमें जो रामराज्य या गांधी जी को जो रामराज्य चाहिए, जो हम कहते हैं रामराज्य, मुझे नहीं लगता कि उसमें हम रावण की अपेक्षा करते हैं। रामराज्य ये है ऐसे आइडियल रूलिंग, आदर्श, और हमेशा आइडियल जो होता है उसमें 100% परफेक्शन होता है, और ये 100% परफेक्शन जो है पुरुषोत्तम, 100% परफेक्शन जो है वो जब परफेक्शन था उसी को स्वर्ग कहते हैं, और एक जमाना था कि वो परफेक्शन भारत में ही था, इसलिए भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता है, गोल्डन स्पैरो, वंस अपॉन ए टाइम, लॉन्ग लॉन्ग एगो। देखो हम स्टोरीज भी ऐसे बनाते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देर वॉज ए किंग, जब मैं ये सुनता था लॉन्ग लॉन्ग एगो देर वॉज ए किंग, तो ये किंग जो है, राजा जो है, कितना पुराना है, लॉन्ग लॉन्ग एगो, उसका कोई वर्णन नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई टाइमलाइन नहीं है, लॉन्ग लॉन्ग एगो। और ये लॉन्ग लॉन्ग एगो में जो किंग था, वही किंग को भारत में लक्ष्मी और नारायण कहते हैं, और वही लक्ष्मी और नारायण का राज्य था, और उस वो स्वर्ग कहते हैं, और ये स्वर्ग कैसा था, उसका वर्णन कैसा चाहिए, उसका वर्णन माउली ने पसायदान में किया है। देखो विजन कितना श्रेष्ठ है, 700 साल पहले माउली ने यह विजन लिया कि मेरा भारत, और सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व, भारत के लिए नहीं मांगा पसायदान उन्होंने, सारे विश्व के लिए मांगा है, और ये विश्व के लिए पसायदान जो मांगा है उसमें कैसे होगा, क्या होगा, ये उन्होंने अपने चिंतन में दिया है, उसका रोडमैप है। और ये रोडमैप जो है वो अगले पंक्तियों में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत क्या हो गई थी, आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसायदान हे। आप भगवान को कहते हैं, विश्वात्मक देव को माउली कहती है कि ये जो मैंने अभी तक ज्ञानेश्वरी के विवेचन किया, वाक यज्ञ जो, वाणी का यज्ञ जो रचा, उससे आप प्रसन्न हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए, और मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए। कैसा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, ओम शांति।
3: रेडियो मनभावन 90.8 एफएम प्रस्तुत योग सूत्र विवेचन माला, अध्यात्म, मनशांति आणि जीवन दर्शन यांचा सुरेख संगम, श्रीमद भगवत गीतेच्या संदर्भातून पातंजल योग दर्शनाचा सखोल प्रवास, पातंजल योग दर्शन अर्थात मनाचे शास्त्र या प्राध्यापक भगवत भरंबे लिखित ग्रंथाचं क्रमशः वाचन, वाचक स्वर योगाचार्य डॉक्टर देवानंद सोनार, संचालक सोहम योग अँड नॅचरोपॅथी, केसी सोसायटी संचालित मूज जेठा महाविद्यालय जळगाव। ऐकायला विसरू नका, 1 जानेवारी 2026 पासून दररोज सकाळी 8 वाजता आणि पुनःप्रसारण दुपारी 4 वाजता योगसूत्र विवेचन माला आपल्या रेडिओ मनभावन 90.8 FM वर। ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर स्वागत करते हैं आप सबका। हैप्पीनेस इंडेक्स की इस श्रृंखला में बहुत सी बातें सामने आई हैं और अगर पिछली कड़ी को देखें तो याद आता है कि हमने बात की थी कि क्या एंटरटेनमेंट खुशी दे रही है। हम अभी तक ये सोचते थे कि हम टीवी जो देख रहे हैं या फिल्म देखने जाते हैं या किताब पढ़ लेते हैं वो हमें एंटरटेन करती है कुछ टाइम तक, मेरे थॉट्स जो मुझे तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे मुझे दूर ले जाती है, मैं किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। लेकिन फिर ये बात समझ में आई थी कि क्यों कहा जाता है कि टीवी देखना या फिल्म देखना एक एडिक्शन बन सकती है, क्योंकि जैसे ही हम जो वहाँ सिचुएशंस हो रही थी उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं, उन्हें अपना थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसे चूज करने का हक उनको दे देते हैं। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात थी लेकिन जब इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, एक्सपीरियंस करते जाएंगे, हमें समझ में आता जाएगा। आज थोड़ा इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि हाउ डज इट रियली वर्क। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, इट्स लाइक अगेन आई कैन अंडरस्टैंड नाउ व्हाई पीपल से कि आप रोज हमारे साथ ड्राइंग रूम में होते हैं, बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इट्स अ जर्नी और हर बार हमारा जो अनुभव है, हम बात यहाँ कोशिश करते हैं समझें, फिर उसे जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो एक रिकैप लेना चाहेंगे आपके साथ कि व्हाट रियली हैपन्स जब मैं किसी भी टीवी के प्रोग्राम में या फिल्म में या नॉवल में इन्वॉल्व हो रहा हो।
1: Yeah, it's not that we're not trying to say के हम ये नहीं देखें। Fundamental, of course, हम choose करें क्या हम देख रहे हैं, क्योंकि information तो अंदर feed हो रही है। सिर्फ अब ये ध्यान रखें, देखते हुए भी कैसे देखें। You know, and it's applicable both the places। जैसे movie को या TV को देखते हुए कैसे देखें, और वही चीज़ फिर आपकी practical day-to-day life में आएगी कि ये जो drama सारा दिन, इसको भी हम drama ही कहेंगे। My journey of life is a drama। Why is it a drama? Because एक सीन के बाद दूसरा सीन with so many actors involved। तो दोनों तरफ हमें ये सीखने को मिलता कि ड्रामा की हर सीन को कैसे देखें। तो जब हम मूवी देखते या टीवी देखते, जस्ट वॉच योर सेल्फ। अगर आप हाफ एन आवर का सीरियल देख रहे हैं या 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं, सिर्फ आज शाम को अगर आप कुछ देखें तो उसको देखते हुए अपने मन को बीच बीच में देख लेना कि वो कैसे कैसे।
0: एक्चुअली आई वॉन्ट टू शेयर व्हाट हैपेंड टुडे। मैं जब आ रही थी तो पहले मैं कुछ अपना सोच रही थी, ड्राइवर ने गाना चला दिया, वो मेरा सबसे फेवरेट गाना था, एकदम से मुझे स्ट्राइक किया, मैं गाना सुनने लग जाती हूँ तो मेरा थॉट खत्म हो जाता है। लेकिन मैंने इस बार चाहा कि नहीं, मैं जो सोच रही थी वो करती रहूं, बट उसकी अट्रैक्शन इतनी थी गाने की, गानों के शब्दों की, और तब मैंने देखा कि गानों के शब्द ना सिर्फ मुझे इन्वॉल्व करते गए बल्कि वो इमोशन भी क्रिएट होने, क्योंकि मैं देख पा रही थी, हम इस पे बात कर चुके थे इसलिए। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वो इमोशन तक नहीं जाना, मुझे वापस आना है अपने थॉट पर मेरा मन नहीं था आने का मेरे को, क्योंकि उसमें एंजॉयमेंट मिल रही थी।
1: स्टिम्युलस था ना, वो एक स्टिम्युलस था जो मेरे अंदर वो इमोशंस क्रिएट कर रहा था। क्या होता, हैप्पीनेस या पेन, दोनों चीज हॉर्मोन्स तो सिक्रीट करती है ना बॉडी के अंदर, एंड द माइंड नीड्स दैट क्रेविंग बट द बॉडी ऑल्सो नीड्स दोज हॉर्मोन्स। तो इफ आई एम वेरी वेरी स्टेबल, अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, दिस ऑल्सो डिवेलप्स धीरे धीरे ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन मेरी बॉडी की कुछ वो होती है, एडिक्शंस होती है, वो हॉर्मोन्स की मुझे आदत पड़ी हुई है, तो मुझे कुछ ऐसा बाहर से चाहिए होता है स्टिम्युलस, कि वो स्टिम्युलस आएगा, वो स्टिम्युलस मेरे अंदर वो इमोशंस क्रिएट करेगा, और जैसे ही वो इमोशंस क्रिएट होंगे मेरे बॉडी के अंदर भी वो हार्मोन सिक्रेट होंगे एंड आई फील गुड, जैसे कि मुझे वो चीज मिल गई जो वो चाहिए थी। फिर इवन भले वो दर्द के ही यू नो इमोशंस हो, वो एड्रेनालिन सिक्रेट हो, लेकिन वो सिक्रेट हुआ ना, वो बॉडी को जो चाहिए था वो सिक्रेट हुआ, आई फील गुड एंड देन आई से दिस इज एंटरटेनमेंट। यू नो ये मुझे चाहिए, दिस मेक्स मी फील गुड इवन इफ आई हैव क्राइड फॉर हाफ एन आवर। हाउ कैन आफ्टर क्राइंग यू फील गुड अदरवाइज? तो कोई लॉजिक ही नहीं। आप आधा घंटा पिक्चर देखा, आप कितनी बार रोए उसके साथ, यहाँ तक कि आपने हैंकी तक निकालना पड़ गया, एंड देन वी से आई फेल्ट गुड आफ्टर वॉचिंग द मूवी। वॉट फेल्ट गुड? समवेयर दोज इमोशंस गॉट क्रिएटेड, द बॉडी सिक्रेटेड व्हाट इट हैड टू डू, एंड आई वॉज लाइक ओके दिस इज वॉट इज माई नीड। जैसे ड्रग्स है, डैमेजिंग है, लेकिन बॉडी को आदत पड़ गई है ना, तो जब तक बॉडी लेती नहीं है उस चीज को,
0: फील गुड हाँ,
1: लेना उसको अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसी तरह अगर मुझे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम से वो स्टिम्युलस मिलता है, देन धीरे धीरे धीरे आई स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि ये तो मुझे देखना ही है। अगर आज मैं पहुंच नहीं पाई टाइम पर, या वो लाइट नहीं है घर में एंड वो प्रोग्राम नहीं आ रहा, या आई विल फील वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। सो दिस इज लाइक जिसको किसी को वो नहीं मिला जो उसको उसकी आदत होती है। जैसे आपने वो सॉन्ग के साथ किया, नेक्स्ट टाइम हम सभी एक्सपेरिमेंट इसको करके देख सकते हैं कि जब हम कुछ देख रहे हैं, पहले जब हम बैठते हैं जस्ट देखने के लिए, आर माइंड इज क्वाइट स्टिल, यू नो. इनफैक्ट पहले तो आर माइंड इज विद अदर थॉट्स. सो दिस इज अबाउट वॉचिंग आर माइंड. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे ही हम आकर बैठे टीवी के सामने, पहले थोड़ी देर मेरे मन में कुछ और चल रहा है जो मैं छोड़कर आया हूँ, अभी ऑफिस का काम या घर का. धीरे धीरे वो थॉट्स खत्म हो जाती हैं एंड यू विल एक्सपीरियंस अ लिटिल स्टेज वेयर यू आर इन, यू नो, नॉट टू मेनी थॉट्स. दिस माइंड इज बिकमिंग साइलेंट, क्योंकि ये वो वाली जो बातें लेकर आया था घर, वो बातें तो खत्म हो गई. तो ये माइंड थोड़ा थोड़ा स्टिल हो जाता है. ये जो स्टिलनेस की स्टेज है, ये है कि यू आर हियर, प्रोग्राम इज देयर, एंड आप उसको डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह आप उस प्रोग्राम को देख रहे हैं. उसका इफेक्ट मुझ पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत थोड़ी देर रहता है. धीरे धीरे हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आती, वो आती है कि हम जजमेंटल होना शुरू करते हैं. ऐसे क्यों बोल रहे हैं ये, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे वट एवर आर ओपिनियन.
0: देखा उसने ऐसे किया तो अब ऐसा ही होना चाहिए. अब व्हाट नेक्स्ट,
1: इवन इन द क्रिकेट मैच ऐसे क्यों,
0: ये बॉल
1: यू सी. सो द सेकंड स्टेज बिकम्स जजमेंटल, कि हम अपना ओपिनियन चाहते हैं कि दैट इज हाउ इट शुड, ऐसे करते तो. इवन द एक्टर्स क्लोथ्स, द सीन, वट एवर, एवरीथिंग. आई स्टार्ट बिकमिंग जजमेंटल. जैसे ही हम जजमेंटल शुरू हुआ, मतलब क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन मार्क की सीरीज में गए, ये जो स्टिलनेस थी वो क्या हो गई,
0: वो खत्म हो गया.
1: बिकॉज वो माइंड ऐसे ऐसे, ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, ऐसे, तो द माइंड स्टार्ट्स गेटिंग डिस्टर्ब. वो स्टिलनेस हमारी खत्म हो गई. सो दिस वॉज द सेकेंड स्टेज. द थर्ड स्टेज जो आती, कि हम उस कैरेक्टर की स्टोरी के अंदर ही
0: इन्वॉल्व हो जाते,
1: पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं. एंड दैट स्टेज विल बी कि वो कैरेक्टर जो इमोशन वहाँ एक्सपीरियंस कर रहा है, वो इमोशन आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग हियर. तो फिर आई एम टोटली इन द स्टोरी, लाइक पूरी तरह से. देन आई हैव नो अदर थॉट एंड देन आई, माय क्रिएटिविटी इज ओवर, बिकॉज नाउ आई एम ओनली क्रिएटिंग व्हाट दे आर क्रिएटिंग. मेरी अपनी अब कोई नहीं रह गई.
0: उससे पहले तो मैं कर रही थी, वैसे
1: उससे पहले
0: जजमेंटल जब मैं हो रही थी,
1: पर जैसे जजमेंटल हुए तब क्या हुआ, क्रिएटिविटी नहीं थी. जैसे ही आप जजमेंटल होते हैं, आपकी एनर्जी तो उल्टा खत्म होने लगती है, क्योंकि आप किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. आई कैन सिट अक्रॉस द टेलीविजन एंड कीप ऑन सेइंग व्हाट आई वांट टू से. मैं कितना भी जजमेंटल हो सकती हूँ, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट. मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ सामने से बैठकर, और मैं कहूँ ये नहीं पहनना चाहिए था, ये पहनना चाहिए था, ये सेट ऐसा नहीं, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट. नो, आई एम थिंकिंग ऑफ दोज थिंग्स विच आर नॉट इन
0: बट माई कंट्रोल.
1: माई कंट्रोल,
0: बट आई हैव अ राइट टू हैव माई ओन ओपिनियन.
1: दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, यू आर हैव अ राइट. लेकिन आप बस बैठे हैं और यहाँ आपका माइंड कंटिन्यूसली वो थॉट्स क्रिएट कर रहा है उन चीजों के बारे में जो आपके कंट्रोल में नहीं है. यूजफुल एनर्जी?
0: No, it can't be. Yes.
1: Useful energy?
0: Actually, I know, it's always, it's of no use.
1: It's a drain. ये आपका drain शुरू हो गया, कि जो वो stillness थी, वो आपका drainage शुरू हो गया, क्योंकि आप एक एक वो thought create कर रहे हैं जो आपके control में.
0: Actually, और इससे मुझे आदत भी पड़ती जाएगी.
1: Exactly. यही चीज तो फिर practical life में आएगी ना, day to
0: day. हर एक को, oh yes.
1: जो आपने कहा, do I not have the right to have an opinion? Yes.
0: So then I'll have my right with
1: सारा दिन पे. ये बिल्कुल सेम चीज फिर रोज के ड्रामा में होती है ना. दैट्स व्हाट वी सेड, जो टेलीविजन के ड्रामा के साथ पहले प्रैक्टिस होती है, वही चीज फिर हैबिट बन गई, तो वही चीज फिर मेरे डे टू डे लाइफ में आती है. सो वी वेंट थ्रू दीज थ्री स्टेजेस, पहले स्टिलनेस, फिर जजमेंटल, एंड तीसरा तो पूरी तरह से इन्वॉल्व. एंड जब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई, तब तो अपनी थॉट क्रिएट करने की मेरी अपनी कैपेसिटी है वो भी भूल गया. मेरी थॉट की पावर मैंने टोटली उस प्रोग्राम को दे दी. नाउ दिस, because I'm doing every day, it's not ki I'm watching a movie just once in a while ya main TV dekh rahi hu once in a while, nahi, hum roz kar rahe hain. To koi bhi cheez jo roz karenge,
0: well, of course,
1: wo ban gayi meri habit. Ab jo humne pichli bar bhi dekha ki agar gussa office mein sirf kar rahe hain ye soch ke ki gusse se kaam hota, lekin wo meri agar ban jati hai habit, to wo habit mere sath
0: har jagah meri personality banti. Yes, now I understand it actually.
1: Ab ye tha, shuru kiya tha jab baith kar dekhna, मैं एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर, एक साक्षी दृष्टा थी, लेकिन आधे पौने घंटे के अंदर अंदर मैं उस ड्रामा के अंदर पूरी तरह से घुस गई. अब यही चीज़ फिर सारा दिन होती, क्योंकि अब मुझे हैबिट पड़ गई है. अब धीरे धीरे तो वो साक्षी दृष्टा होना कैसे वो ही हमें आज नहीं पता चलता. और इसलिए आज हमारी वोकैबुलरी ये हो गई है कि अटैचमेंट तो नेचुरल है, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट कंफर्टेबल नहीं लगता लोगों को, बहुत कोल्ड लगता है कि हम बहुत स्टिल हैं, हम बहुत डिटैच्ड हैं, हमारे ऊपर असर क्यों नहीं पड़ रहा. लेकिन ये जो असर पड़ने का, प्रभाव पड़ने की आदत जो पड़ी थी वो इससे पड़ती है.
0: वो कंटिन्यूस. इनफैक्ट अगर हम देखें, वो जब अभी हुआ था, जब मुंबई का जो अटैक हुआ था, तो उसमें वो जो कितने दिन तक, 2 दिन लगातार चला था, हम पूरा टाइम डिस्टर्ब्ड रहे थे.
1: लेकिन अब इसको ही अगर आप देखो, जो न्यूज में अगर कोई यस एक इंसिडेंट हुआ है एब्सोल्युटली कि वो नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है बात, लेकिन जब हम उसको 24 घंटा हर रोज स्ट्रेच करते हैं, और उसमें हम करते क्या है, किसी के साथ कुछ हुआ, हम उसी को लेकर वो रोते हुए को बार बार दिखाएंगे, बार बार उसको पूछेंगे आपको कैसा फील हो रहा है. समवेयर वी आर यूजिंग इमोशंस एंड द अदर पर्सन फीलिंग टू सेल इट इन टू द मार्केट. और क्यों? क्योंकि हम फील करते हैं कि ये लोग देखना चाहते हैं. दिस साउंड्स वेरी हार्श, दिस साउंड्स वेरी हार्श, बट इट इज द ट्रूथ. हमें लगता है कि ये रहम है, एक्चुअली नहीं, उनको रहम नहीं चाहिए, उनको कंपैशन चाहिए, उनको लव चाहिए. लेकिन लव नहीं है अगर हमने भी पेन क्रिएट किया कुछ भी ऐसा देखकर. जब ये पूरा टेरर अटैक हुआ, तो व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन दैट वाज बीइंग फ्लडेड एवरीवेयर, कि आप सबको गुस्सा होना चाहिए इस बात को लेकर. व्हाई आर यू नॉट एंग्री, पीपल शुड गेट एंग्री, वही तो सोल्यूशन है. हाउ कैन एंगर बी द सोल्यूशन टू एंगर? जिन्होंने जो किया दैट वाज अ साइन ऑफ एंगर, रिजेंटमेंट. ऑलरेडी उस शहर के अंदर जो वातावरण फैल चुका था वो दर्द का था. बहुत लोगों की जीवन ऊपर नीचे हो गई थी, बहुत लोग डर में थे, अपने अपने घरों में ट्रैप्ड थे. इन एन एनवायरमेंट जहां ऑलरेडी इतना पेन है, इतना दर्द है, वी आर ट्राइंग टू से गेट एंग्री.
0: नहीं, एंड इनफैक्ट वही बात कर रही हूँ कि वो सिचुएशन, अगर हम जो हम जिस मुद्दे पे थे, उस सिचुएशन ने जो कहीं और हो रही थी, उसने पूरी तरह से पूरे जो वॉच कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, उन सबके माइंड्स को कैप्चर ही तो कर लिया.
1: या बट नॉट इवन सी, अगर हम देख भी रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद मेरे माइंड में इमिजिएटली ये आना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. आई टेल यू अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट हैपन्स एट द ब्रह्मा कुमारीज. वी नॉट सेइंग कि ये होना चाहिए, जो समथिंग वेरी वेरी नाइस दैट हैपन्स हियर इज कि जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो जाता है, थोड़ा भी ऊपर नीचे, चाहे वो नेचुरल कलामिटी है या वो कुछ ऐसी बात है, इमिजिएटली एवरीवन नोज दिस, हर सेंटर पर जितने भी हम सारे भाई बहने हैं, वी हैव कलेक्टिव मेडिटेशन. हम सब इकट्ठे मिलकर, अलग अलग अपनी अपनी रीति से घर पर तो करते ही हैं, लेकिन कलेक्टिव टाइम फिक्स करके हम सब सेंटर पर बैठते हैं, और सेंटर पर इकट्ठे मिलकर वी क्रिएट वाइब्रेशंस ऑफ पीस, लव एंड पावर. क्योंकि भगवान परमात्मा हमेशा ये कहते कि दर्द तो ऑलरेडी है. आप दर्द के बारे में चर्चा करते हो, दर्द की खबरें सुन रहे हो और दर्द क्रिएट कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस टाइम? Don't just see it as a stimulus. See what is my responsibility now. तो वहाँ दर्द है, हमें क्या भेजना? हमें प्यार भेजना, हमें शांति भेजनी. लेकिन वो कब भेज पाएंगे? जब हम detached हैं. लेकिन अगर मैं ही दर्द में चली गई, हाय क्या हुआ, कैसे हुआ, तो where is the power?
0: और इनफैक्ट unknowingly मैं दिए ही जा रही हूँ, भेजी जा रही हूँ.
1: हमें लगता है कि ओ मैं तो दिल्ली में बैठी हूँ, ट्रेजेडी तो बॉम्बे में हुई, बट इट्स नॉट ट्रू. इट्स अ कलेक्टिव वाइब्रेशन.
0: डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये तो बात समझ में आती है. लेकिन जब अगेंस्ट चीजें हो रही हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स के, ह्यूमन काइंड के, तो हम ही तो हैं, इंसान ही तो हैं जिन्होंने अपनी वॉइस भी रेज करनी है. तो अगर हम स्टेबल होके देख रहे हैं या मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, इजंट इट बीइंग नॉन रिएक्ट, आई मीन नॉट डूइंग थिंग्स,
1: यू बिकम वेरी पैसिव.
0: यस, यू नो, लाइक मतलब आप बहुत स्लो हो जाते हैं. आपको अपनी बात कहने का भी तो वो जरिया चाहिए.
1: एब्सोल्युटली. लेकिन अपनी बात कहने का जो तरीका है, एक तो वो मैटर करता, और दूसरी अपनी बात कहने के लिए पहले आपकी सोच में तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए ना. जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, सी एंगर, पेन, हर्ट, उस टाइम जो हम जिस अटैक के बारे में बात कर रहे हैं, जो 3 फंडामेंटल इमोशंस बहुत हैवी थे, एंगर, पेन, हर्ट, रिजेंटमेंट, एंड स्पेशली वो पूरी, यू नो, एक पूरा एक फ्लेवर जो क्रिएट हो गया हर जगह, इट वॉज दीज 3. जब हम इन तीनों इमोशंस के वशीभूत हैं, ये डू वी हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्या हम उस समय राइट सोच पाएंगे, राइट बोल पाएंगे। अब इसी स्पेसिफिक बात को भी अगर हम देख लें, जितनी दिन वो न्यूज़ में था, हम देख रहे थे क्या हो रहा है, सो वी वर ऑल्सो यू नो एवरी वन इज़ वेरी एंग्री, एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट, किया हमने क्या इज़ अ क्वेश्चन मार्क, हमने क्या किया अपने देश के लिए, कलेक्टिव एंगर था, कलेक्टिव एंगर का रिजल्ट।
0: Again, you know, this is what people have seen.
1: See, if you want to voice your opinion, all the more you require stability. We thought ke anger and reaction hamari awaaz jyada, you know, jaise normal bhi, wo to badi baat hai, choti baat pe, office mein bhi hum dekhenge ya ghar pe bhi, ki main zor se chilla kar bolunga na to aapko zyada theek se samajh mein aayegi. See, the thing is, first is impact on you, ki aap jo emotions create karte hain uska aapke upar impact, fir collective sab logon ke upar uska impact, fir uska end result. Is particular case mein kya hua, humne bahut zyada kuch kiya nahi, humne sirf uske bare mein jitne din wo news mein tha hum bhi news ke sath the, and hum bhi usko, you know, office mein bhi wohi baat ho rahi hai, ghar mein bhi wohi baat ho rahi, humne kiya kya 10 din 15 din, I think that's about it all. Uske baad news change ho gayi, कोई और चीज हो गई दुनिया के किसी और कोने में,
0: पब्लिक मेमोरी बहुत छोटी होती है,
1: हम उसके बारे में बात करने लगे, जिनके जीवन पर उसका इफेक्ट हुआ, जो आज दर्द में है वो तो आज भी दर्द में है, हमने उनके लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने कंट्री के लिए क्या किया इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, हमने सिर्फ गुस्सा किया, व्हाट डज दैट रिजल्ट।
0: अच्छा, लेकिन
1: अगर सारे इकट्ठे होकर इफ वी हैव टू रियली डू समथिंग उसके लिए, क्योंकि टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, इवन कुछ करने के लिए पावर चाहिए। अगर हम अंदर से हर्ट हैं, गुस्से में हैं, हम वीक हैं, वीक अंदर से वीक होकर सिर्फ शोर मचाकर हम कोई परिवर्तन ले आएंगे, विल नॉट रियली वर्क, एंड वी नीड टू रिमेम्बर वो करना, वो उस तरह से करना धीरे धीरे मेरे क्या बनते जा रहा
0: है,
1: हैबिट बनता जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो क्या होता है कि हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वी नीड टू रिमेम्बर, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, डिटैच होकर देखें, एंड तुरंत अपने आप से पूछें अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो दैट लाइक आई वाज शेयरिंग एट द ब्रह्मा कुमारीज, हम लोग कलेक्टिव मेडिटेशन करते कि हम सब बैठकर, और ये तब नहीं सिर्फ कि अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट होता, बट एवरी मंथ ऑल्सो, एक है कि एवरी डे हम शाम को जब मेडिटेशन करते 6:30 to 7:30, हम दो बार मेडिटेशन करते हैं हर रोज दिन में, वन इज इन द मॉर्निंग, एंड ये हमने बहुत यू नो क्लियरली जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जैसे ये किया है कि मॉर्निंग में जो मेडिटेशन है वो है अपने ऊपर काम करने का समय, अपनी मेहनत, अपने संस्कारों को परिवर्तन, और शाम को जब मेडिटेशन करते इट इज़ फॉर सर्विंग द वर्ल्ड, कि सुबह आपने मेडिटेशन किया, आपने अपने अंदर पावर्स भरी, शाम को आप मेडिटेशन करो एंड वो पावर्स जस्ट सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड, जस्ट सेंड इट आउट। Now, when I came first to the Brahma Kumaris, I just didn't know how this works. ये कैसे होगा कि हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं कुछ, and this is going out to the world. ये, and for me it was a question mark कि इसका क्या फायदा हो सकता है कि हम यहाँ बैठे हैं, वो किसी और देश में है, वो तो अभी भी दर्द में ही है, एंड ये ऐसी चीज है जिसका कोई तुरंत प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं पता चलता कि यू नो जैसे वी यूज टू कॉल दिस डोनेशन ऑफ पीस एंड पावर। तो आई सेड धन डोनेट करो तो दिखाई देता, कपड़े डोनेट करो दिखाई देता, मतलब हमें ये नहीं कि फॉर एटलीस्ट आई कैन सी दैट आई एम गिविंग इट टू यू एंड यू आर टेकिंग इट, एंड आई सी कि आपको वो मिला जो आपको चाहिए था, लेकिन पीस डोनेट करो, वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, आई वुड नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस के, बट नाउ व्हाइल आफ्टर डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स आई हैव रियलाइज्ड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हाँ, हमें उसका तुरंत वो नहीं पता चलेगा कि वो किस तक पहुंचा, क्या हुआ, लेकिन जब ये समझ में आ गया कि थॉट्स एनर्जी है और जो एक एक थॉट हम क्रिएट करते वो वाइब्रेशन है जो एनवायरनमेंट में फैलता है, पहले मुझे मिलता, मेरे आसपास जो है उनको मिलता, देन ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड कि एक एक थॉट जो हम क्रिएट करते वो वाइब्रेशन है, इट डजंट स्टे इन, इट रेडिएट्स, इट वाइब्रेट्स इन टू द एनवायरनमेंट, एंड वो जिनके प्रति भी क्रिएट किया गया होगा, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव सीन एवरी टाइम, कि जो थॉट मैं आपके लिए क्रिएट करूंगी वो आप तक पहुंचेगा। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं इट इज कॉन्शियसली क्रिएटिंग थॉट्स, यू नो वी डोंट रियलाइज, हम लोग आज सब बोल रहे हैं कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, एवरी वन इज टॉकिंग कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, कैसे आएगी, जब हम एक एक शांत रहेंगे तब ऑटोमेटिकली शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे, ऑटोमेटिकली शांति होगी. हम सब अशांत हैं और हम कहते हैं दुनिया में शांति होनी चाहिए. दुनिया मीन्स व्हाट? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड. हरेक जो हम हैं, हम सबकी मन की स्थिति क्या है, कलेक्टिव सबकी मन की स्थिति को अगर हम लें, वो दुनिया की स्थिति है. तो हम कहते हैं दुनिया में शांति हो तो मैं शांत हो जाऊंगा, यू नो, दुनिया सब ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं शांत होंगी तो दुनिया में शांति आएगी. तो नाउ वी आई कांट वेट कि पूरी दुनिया में सभी 600 करोड़ लोग जब शांत हो जाए तो दुनिया शांत होगी. लेकिन एक एक करेगा, एक एक क्रिएट करेगा वो पीसफुल वाइब्रेशन, तो दुनिया में तो आएगी. लेकिन सबसे पहले आई विल बी पीसफुल, माई फैमिली विल बी पीसफुल, वेयर आई एम वर्किंग विल बी पीसफुल. तो ये जो हम मेडिटेशन करते हैं, वी डू इट एवरी इवनिंग 6:30 to 7:30, सर्विंग द वर्ल्ड, सेंडिंग आउट पावर्स ऑफ पीस, लव एंड पावर. एंड स्पेसिफिकली एवरी थर्ड संडे ऑफ द मंथ, ये तो फिक्स्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरी थर्ड संडे ऑफ द मंथ 6:30 to 7:30 सभी भाई बहनें सेंटर पर आते. एंड इट इज कॉल्ड मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड पीस, कि विश्व में शांति के लिए हम इकट्ठे मिलकर मेडिटेशन करते.
0: इन फैक्ट यू नो इट्स सच अ ब्यूटिफुल आस्पेक्ट कि इट विल मेक मी फील सो गुड कि आई एम डूइंग इट फॉर द वर्ल्ड. यू नो अभी तक तो सब कुछ, इवन प्रोग्राम में भी हम अपने लिए कर रहे थे, यू नो हर चीज हम पर फोकस हो रही थी. और कहीं ना कहीं वो जो ह्यूमन एलिमेंट ये होता है कि हम दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं, और हर बार हमारे को लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कुछ किसी का दर्द नहीं बांट सकते, कुछ नहीं कर सकते. सो दिस गिव्स मी सच अ गुड फीलिंग. एक्चुअली वी शुड ऑल ट्राई टू एक्सपीरियंस इट.
1: इन दिस केस इट इज कि जब आप कर रहे हैं किसी और के लिए, सबसे पहले किसको मिलता?
0: हाँ, खुद को मिलता
1: सबसे पहले. सी इफ आई डू समथिंग फॉर यू, इट्स फॉर यू. तो उसमें शायद हो सकता है मुझे कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन इसमें सबसे पहले मुझे मिलता और फिर मेरे थ्रू औरों तक पहुंचता. एंड जब हम देते हैं, दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग. लेना लेना सारा दिन, ये तो बहुत ईजी है, लेकिन जो खुशी मिलती है जब हम देते हैं, दिस इज समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड. एब्सोल्युटली.
0: इन फैक्ट इट ऑलवेज हैपेंस, यू नो, हम कुछ भी जब देते हैं हमें अच्छा लग रहा होता है.
1: यू नो गिफ्ट, जैसे गिफ्ट होता है, आई हैव टू आस्क मायसेल्फ, गिफ्ट देने में ज्यादा अच्छा लगता या गिफ्ट लेने में? इट्स ऑलवेज द गिविंग, अ गिविंग ऑफ अ गिफ्ट. आप चूज करने जाएंगे, आप लेंगे, यू ऑलवेज सो हैप्पी बिकॉज गिविंग इज ह्यूमन नेचर. लेकिन वो हम अपनी बेसिक नेचर को आज थोड़ा सा भूल गए हैं. एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग हैप्पीनेस, giving love, giving peace, we are wanting asking happiness, for asking for love, asking for peace. So let's experiment this meditation together.
0: In fact, Sister Shivani, hum jo baat kar rahe the, wo ye thi ki jo impact tha. Aaj is puri baatcheet mein ye to samajh mein aaya ki kya process hai, kya kuch kaise hota hai, jo jisse hum you know, हमारा जो पूरा जितनी देर हम टेलीविजन के आगे होते हैं, क्योंकि ये जो हमने एग्जांपल्स लिए उसमें भी तो यही हुआ, जितने दिन तक वो टीवी पर दिखते रहे, जितने दिन तक वो चर्चा में रहा, उतने दिन तक वो हम पे हावी रहा, उसके इमीडिएटली बाद हमें याद भी नहीं रहा,
1: कुछ और आ गया ना तब.
0: हाँ, सो इट मीन्स इट टुक ओवर ना.
1: सो दैट मीन्स मेरी अपनी क्रिएटिविटी क्या थी. इफ यू रियली फेल्ट फॉर व्हाट हैड हैपेंड, तो टीवी से वो हट भी गई न्यूज, आपकी फिर भी वो रहना ही चाहिए थी ना, वट एवर यू थॉट, वो तो इट्स फिनिश्ड. सो इट्स नॉट रियली दैट यू फेल्ट इट, इट इज समवन एल्स वाज क्रिएटिंग योर इमोशंस फॉर यू दैट टाइम, एंड वो समवन एल्स चेंज्ड द टॉपिक, तो हमारा भी चेंज.
0: तो हमारी रैशनैलिटी खत्म हो चुकी होती है एक्चुअली.
1: वही, दैट्स व्हाट वी सेड, हमारी क्रिएटिविटी कि कौन सी थॉट्स क्रिएट करनी है, चूज करनी है, इट्स ओवर.
0: तो वी अंडरस्टूड कि शुरुआत में क्या होता है, देयर इज अ स्टेज वेयर वी आर स्टेबल, वी आर डिटैच्ड, हमने जो पूरा प्रोसेस देखा, और उसके बाद हमारा जो यू नो लोगों के ऊपर जो जजमेंटल होना कि ये ऐसा किसी भी चीज़ के लिए, एंड देन पूरी इमोशंस हमारे जो टेक ओवर करती है. ये तीन प्रोसेस हैं जब हम किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, बाहर ही किसी भी, और ये फिर मेरी हैबिट बनता जाता है, जजमेंटल होना और फाइनली फिर उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी होने देना. इनसे अब काम कैसे करना, हम टेलीविजन के प्रोग्राम से ही जुड़े हुए चीज़ें करेंगे, सो दैट क्योंकि आप इस प्रोग्राम से भी जुड़े हुए हैं, तो उसको भी अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको कम ना होने दें. यू नो आपको जो समझ में आ रहा है, जो एक्सेप्ट, मतलब आप ब्लाइंड, बार बार हम ये कहते हैं कि ब्लाइंड फेथ ना रखकर, इसीलिए अनुभव की बात कही जाती है,
1: एक्सपेरिमेंट.
0: हाँ, कि आपका एक्सपेरिमेंट और फिर आपका एक्सपीरियंस जो होगा उसके साथ वो कैसा होगा, वही आपको तय करवाएगा. आपके मन में कोई बात आ रही है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें फोन भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9973446 9873666 हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज हमने मेडिटेशन के उस एस्पेक्ट को भी समझा जो कलेक्टिव होती है और जो सिर्फ मुझसे जुड़ी नहीं हो सकती, लोगों से भी जुड़ सकती है, विश्व से जुड़ सकती है। तो आज सिस्टर शिवानी चलते चलते चाहेंगे कि थोड़ा सा अनुभव वो करें।
1: आज दिन तक हमने मेडिटेशन किया, आज उसमें एक नया एस्पेक्ट देखते कि हाउ आई कैन क्रिएट वाइब्रेशंस ऑफ पीस एंड सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड। तो इसमें कोई हमें स्पेसिफिकली लोगों के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन आई क्रिएट वो शांति की संकल्प, वो अनुभूति, एंड देन आई सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड। डोंट सिट एंड थिंक कि वो किस तक पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा, नहीं, जस्ट सेंड इट आउट विद द प्योर फीलिंग एंड अ प्योर इंटेंशन एंड इट विल रीच आउट टू देम। लेट्स सिट कम्फर्टेबली। बाहर की रोजमर्रा की बातों से अपनी बुद्धि को हटाते हुए अपने ऊपर लेकर आते हैं। I, that powerful being, जो हर संकल्प क्रिएट करता है। I am the creator of every thought. I am a peaceful being. शांति मेरा अपना स्वभाव, मेरी अपनी नेचर है। ये शांति की वाइब्रेशंस, ये शांति की शक्ति मुझसे निकलकर सारे विश्व तक पहुंच रही है। देखने का प्रयास करें वाइब्रेशंस ऑफ पीस। इट्स लाइक अ लेजर बीम मुझसे निकल

0: कृषि विभाग महाराष्ट्र शासन आत्मा आणि रेडिओ वत्सगुण द्वारा प्रसारित कृषी कार्यक्रम श्रृंखला ऐकत रहा रेडिओ वत्सगुण 90.8 FM वर आवाज वाशिमचा वाशिमचा।
1: किसानों की बात रेडिओ वत्सगुण के साथ हा शेतकरी बांधवांसाठीचा कार्यक्रम रेडिओ वत्सगुण ने प्रसारित केला। आमची यानंतरची उद्घोषणा काही क्षणातच।
2: आपण ऐकत आहात रेडिओ मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: tune in anywhere. Radio Man Bhavan 90.8 FM, always heart touching.
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। पिछले एपिसोड में हमने कबीर के उस अद्भुत दर्शन को समझा जहां वे गुरु गोविंद से भी पहला स्थान देते हैं, क्योंकि गुरु ही वह सेतु हैं जो हमें परमात्मा से मिलाता है। लेकिन सवाल यह है कि यह गुरु चमत्कार करता कैसे हैं? क्या वह केवल कान में कोई मंत्र फूंक देता है? नहीं, कबीर कहते हैं कि गुरु तो एक योद्धा है और उसका ज्ञान एक बाण है। आज का एपिसोड गुरु के इसी शब्द वेद के बारे में है। श्रोताओं, आज हम कबीर के उस बाण की बात करेंगे जो शरीर को नहीं बल्कि अहंकार को मारता है। अक्सर दुनिया में हथियार जान लेने के लिए उठाए जाते हैं, लेकिन कबीर के यहाँ सद्गुरु ने हथियार जान देने के लिए उठाया है, एक नया जीवन देने के लिए। आज का दोहा गुरु के उसी शब्द वेद का दर्शन है।

0: ईर सतगुरु लई कमाण करी बाहर लागा तीर एक जु बाह्य प्रीति सु भीतरी रहा शरीर। इस दोहे में कबीर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सदगुरु अपनी साधना का धनुष उठाते हैं तो वे उपदेश नहीं देते, वे शिष्य की सोई हुई आत्मा पर चेतना का प्रहार करते हैं। यहाँ धनुष का अर्थ वह माध्यम है जिससे सत्य का संप्रेषण होता है, और बाण है वह महावाक्य जो गुरु के अनुभव की मिट्टी से तपकर निकलता है। दर्शन की भाषा में कहें तो गुरु जब बाण चलाता है तो वह शिष्य के कान के पर्दे नहीं बल्कि उसकी बुद्धि की गुहा को बेध देता है। लेकिन कबीर ने एक विशेष शब्द का प्रयोग किया है, प्रीति। दर्शन यह कहता है कि रूखा ज्ञान केवल बोझ होता है, लेकिन जब ज्ञान प्रेम के रस में डूब कर आता है तब वह मर्मभेदी हो जाता है। गुरु का वह एक बाण शिष्य के भीतर के मैं अर्थात अहंकार की हत्या कर देता है। और चमत्कार देखिए, यह बाण शरीर से बाहर नहीं निकलता बल्कि भीतर रहया शरीर, वह भीतर ही ठहर जाता है। इसका अर्थ है कि वह ज्ञान अब कोई बाहरी सूचना नहीं रही, वह शिष्य का स्वभाव बन गया है। यह बाण अब शिष्य के रक्त में, उसकी सांसों में और उसके अस्तित्व में समा गया है। जैसे लोहा आग में तपकर खुद आग हो जाता है, वैसे ही गुरु का शब्द बाण खाकर शिष्य खुद शब्द हो जाता है। आज का चिंतन इस दोहे से यह निकलता है कि दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि किसी महापुरुष की कोई एक बात आपके भीतर जाकर अटक गई हो, जिसने आपको अंदर से हिला दिया हो? दर्शन कहता है कि वही क्षण आपके पुनर्जन्म का क्षण है। सद्गुरु का वह बाण आपको घाव तो देता है, पर वह घाव ही आपकी मुक्ति का द्वार बनता है। जाते जाते तो आज तलाश कीजिए उस शब्द की, उस बाण की, जो आपके भीतर के अंधेरे को चीर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम।
1: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट।
2: बा तथागता, तू मान्य केलास कार्यकारण भावाचा अत्यंत महत्वपूर्ण नियम, तसेच त्याचे उपसिद्धांतही। तथापि कार्यकारण भावाशी ईश्वरवादी दृष्टिकोन, ईश्वराचे पूर्वनियोजन तू केलेस अमान्य, आत्म्याचा फेरा तू केलास अमान्य, आणि मोक्ष व मुक्तीऐवजी स्वीकारलेस वैज्ञानिक सिद्धतेचे तत्व निब्बाण म्हणून। तुझ्या शिकवणुकीचा मध्यबिंदू मन आहे, सर्वांच्या अग्रभागी मन, मनाचे आकलन, त्यामुळे महत्त्वाचे आकलन मनाचे संस्कार। माणसात निर्माण होणाऱ्या किंवा बाह्य परिणाम करणाऱ्या चांगल्या वाईटाचा परिणाम होतो मनावर। जे असते वाईट तेही उत्पन्न होते मनातून, आणि जे असते चांगले तेही उत्पन्न होते मनातून। अशुद्ध मनाने झालेले बोलणे वाईट कर्म नेतात सोबत, बैलाच्या पाठोपाठ जाणाऱ्या बैलगाडीच्या चाकाप्रमाणे। म्हणून मनाची शुद्धी, मनावरील संस्कार, चित्तशुद्धी हा आहे धर्माचा सार। त्यामुळे मन सांभाळावे, विवेकी बनवावे आर्य अष्टांगिक मार्गाने। खरा धर्म हा धर्मग्रंथात नसतोच मुळी, तो असतो आचरणात मनाच्या चित्तशुद्धीसह। बा तथागता, माणसाच्या उत्कर्षासाठी तू शील मार्गाला म्हणजेच सद्गुणांच्या मार्गाला महत्व प्रदान केलेस। शील संवर्धनासाठी तो उद्घेश तू उद्घोषिले 10 गुण, शील, दान, उपेक्षा, नैष्कर्म्य, वीर्य, शांती, सत्य, अधिष्ठान, करुणा आणि मैत्री। शील म्हणजे नीतिमत्ता, मनाचा असावा कल चांगल्या गोष्टींकडे, वाटावी त्याला लाज अपराध करण्याची, शिलालाच मनावे पाप भिरुता। नैष्कर्म्य या सद्गुणात होतो अहिक सुखाचा त्याग, अन टाळली जाते उतावीळ अवस्था, परतफेडीच्या अपेक्षेविरहित। केले जाते दान दुसऱ्याच्या भल्यासाठी, भले प्राणत्याग करावा लागला तरी। योग्य प्रयत्नाने होते वीर्य पुष्ट, तेव्हा हाती घेतलेले कर्म सामर्थ्यानिशी सर्व करावे पूर्ण, वीर्यवान होऊन। एकाग्रतेच्या आकलनाने होते प्राप्त ज्ञान, समजतो त्यातील विवेक, त्यामुळेच ज्ञान साधनेच्या विवेकाने पुष्ट होते औदासीन्य व अलिप्ततेमधील फरक, आचरणातून नोंदवण्याचे सामर्थ्य। द्वेषाने द्वेष शमत नसतो, तो शांत होतो फक्त क्षमाशीलतेने, आणि शांतीच म्हणजेच क्षमाशीलता। दृढ निश्चय असतो अधिष्ठानात, तशी प्रेमपूर्ण दयाशीलता असते करुणेमध्ये। शत्रूविषयी देखील असतो प्रेमभाव, मैत्रीभाव, बंधुभाव बाळगणे म्हणजे मैत्री होय। आणि उपेक्षा म्हणजे निराळी अशी अलिप्तता औदासीन्याहून। उपेक्षा म्हणजे अनासक्ती किंवा आवड नावड नसलेली स्थिती असते मनाची, फलप्राप्तीने विचलित होत नाही आणि निरपेक्षतेने प्रयत्नरत राहते उपेक्षा। अशा शीलमार्गाच्या संवर्धनाने पुष्ट होते मन, बनते विवेकी, सुसंस्कारित माणूस करते उभा संस्कृती संवर्धन करण्यासाठी। तसे सत्य आणि ज्ञान संवर्धन असते विवेकी बुद्धिवादासाठी, त्यातल्या गुणसंपन्न मानवासाठी, संस्कृतीच्या शुद्ध प्रवासासाठी।
3: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
4: आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आपलं खानदेश, आपली माणसं।
5: नमस्कार, ओम शांती। पिछले एपिसोड में हमने क्या किया, ये पसायदान का मतलब क्या है इसके बारे में जानकारी ली, एक कथा भी सुनी हमने, और ये पसायदान क्या मांगना है, भगवान से क्या मांगना है इसके ऊपर चर्चा भी की, कहानी सुनी, चिंतन किया। ऐसे ही हमारे माउली ने, ज्ञानेश्वर महाराज, इन्होंने भगवान से, विश्वात्मक देव से, विश्वात्मक भगवान से पसायदान मांगा है। पहले पहले जब मैं उसे पढ़ता था, उसको चैंट करता था, बोलता था मुख से, क्योंकि सिर्फ 9 लाइन है, 9 चरण है, 9 ओवी है, और पढ़ने में और बोलने में कितना वक्त लगता है, 3 मिनट भी नहीं लगते। अभी इस 3 मिनट में वो जो ओवी है, जो शब्द है, उसका अगर गहराई तक जाके अर्थ नहीं समझेंगे तो 3 मिनट में पूरा हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये राजयोगा का ज्ञान मुझे मिला तो दृष्टि बदल गई, और उसके ऊपर गहराई से चिंतन कैसे करना है इसके बारे में जानकारी मिली, और ये चिंतन करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि माउली ने जो पसायदान मांगा है उसमें इस धरती पर स्वर्ग लाने के लिए मांगा है। कामना जो है, इच्छा जो है, रिक्वेस्ट जो है, या बाप के पास बेटे की डिमांड जो है, वो है इस धरती पे स्वर्ग लाना। आइडिया अच्छी लगती है, लेकिन उसके पहले हमें यह देखना है कि इस धरती पे स्वर्ग लाना मीन्स क्या है, क्योंकि ये स्वर्ग जो कंसेप्ट है ना वो बहुत अच्छा है। हम बोलते हैं ये स्वर्ग सुख है, स्वर्ग हेवन, गो टू हेवन कभी कहते हैं हम लोग, जब गुस्सा आता है तो कहते हैं गो टू हेल, लेकिन जब प्यार आ जाता है तब कभी प्यार से कहते हैं गो टू हेवन नहीं, कहते जरूर है हेवनली ब्लिस, हेवनली हैप्पीनेस, स्वर्ग सुख है। स्वर्ग ऐसी चीज है जहां दुख की कल्पना भी नहीं है, ऐसा समझते हैं। लेकिन जब कोई स्वर्ग में जाता है या हम कहते हैं यह स्वर्ग पधारा, तब क्या करते हैं, रोते हैं या हंसते हैं? एक्चुअली सही पूछा जाए तो हमें हंसना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह गया है, लेकिन रोते हैं। इसका कई लोगों ने यह भी समझाया है कि बिकॉज वी आर पार्टिंग, हमारा वियोग हो जाता है शरीर से, वो दूर चले जाते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। ठीक है, मैं उसके ऊपर ये बहस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है और यह विषय भी नहीं है, लेकिन मुझे ये कहना है कि यह स्वर्ग, स्वर्ग जो हम कहते हैं, यह स्वर्ग जो है, हेवन जो है, ये इतना अच्छा है, ये कल्पना आई है मीन्स कहीं ना कहीं पहले होगा। एवरीबडी, और चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, या ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, ये कल्पना जो है स्वर्ग की या जन्नत की या हेवन की, ये तो है। ये स्वर्ग जो है या जन्नत जो है या हेवन जो है वो पहले कहाँ था? अगर मैं कहूँ पहले इसी धरती पे था, इसी पृथ्वी पे था और इसी भारत में था। यस, भारत में था, और भारत में था बिकॉज इट वॉज ओनली वन कॉन्टिनेंट। तो ये जो भारत है, मेरा भारत, और यही कल्पना लेके अभी अब्दुल कलाम जी भी आए हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पावरफुल इंडिया इन 2020। उसमें कहीं ना कहीं बेस है, या ऐसे बेसलेस स्टेटमेंट्स नहीं है, लेकिन वो हमें उसकी गहराई तक जाना चाहिए। और यह स्वर्ग क्या है इसके ऊपर बहस नहीं करनी है, मुझे यह कहना है कि संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर जी ने जो पसायदान में मांगा है, यह स्वर्ग इस धरती पे लाने के लिए मांगा है। अभी यह स्वर्ग तो मांग लिया उन्होंने, यह स्वर्ग कैसे मांगा है उसका वर्णन जो है वो पसायदान में है, एक एक लाइन में है, उसके ऊपर भी हम चिंतन करेंगे। और इसी स्वर्ग को हम राम राज्य भी कहते हैं, राम राज्य गांधी जी का हम कहते हैं, गांधी जी के मन में था कि ये भारत में राम राज्य आएगा। अभी ये राम राज्य जो है, जो हम कहते हैं राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए, उसमें हमें क्या अभिप्रेत है, व्हाट वी थिंक? ये राम राज्य जब कहते हैं तब उसमें रावण है, राम की सीता रावण भगा के लेके जाएगा, मारीच है, लक्ष्मण है, या राम जी का वनवास है? अगर राम राज्य चाहिए हमें तो ये सब चीजें उसमें अपेक्षित है। डू वी थिंक दैट जब राम राज्य आएगा तो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर, कुंभकर्ण भी होगा, या हमें राम राज्य कुछ अलग ही चाहिए? क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, हम सब कहते हैं इसलिए कहते हैं, लेकिन उसके ऊपर चिंतन नहीं करते। और चिंतन जब करना शुरू करते हैं तब हमें लगता है कि हम थोड़ा हट के जा रहे हैं, कहीं हम उसमें गलती तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे कॉन्शियस को ये कोई चीज छूती है, कोई भाती है, तो वो सही ही हो जाएगी। हमें जो रामराज्य चाहिए, हमें जो रामराज्य या गांधी जी को जो रामराज्य चाहिए, जो हम कहते हैं रामराज्य, मुझे नहीं लगता कि उसमें हम रावण की अपेक्षा करते हैं। रामराज्य ये है ऐसे आइडियल रूलिंग, आदर्श। और हमेशा आइडियल जो होता है उसमें 100% परफेक्शन होता है, और ये 100% परफेक्शन जो है पुरुषोत्तम, 100% परफेक्शन जो है वो जब परफेक्शन था उसी को स्वर्ग कहते हैं। और एक जमाना था कि वो परफेक्शन भारत में ही था, इसलिए भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता है, गोल्डन स्पैरो। वंस अपॉन ए टाइम, लॉन्ग लॉन्ग एगो। देखो हम स्टोरीज भी ऐसे बनाते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देर वॉज ए किंग। जब मैं ये सुनता था लॉन्ग लॉन्ग एगो देर वॉज ए किंग, तो ये किंग जो है, राजा जो है, कितना पुराना है? लॉन्ग लॉन्ग एगो, उसका कोई वर्णन नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई टाइमलाइन नहीं है। लॉन्ग लॉन्ग एगो। और ये लॉन्ग लॉन्ग एगो में जो किंग था, वही किंग को भारत में लक्ष्मी और नारायण कहते हैं, और वही लक्ष्मी और नारायण का राज्य था, और उस वो स्वर्ग कहते हैं। और ये स्वर्ग कैसा था, उसका वर्णन कैसा चाहिए, उसका वर्णन माउली ने पसायदान में किया है। देखो विजन कितना श्रेष्ठ है, 700 साल पहले माउली ने यह विजन लिया कि मेरा भारत, और सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व। भारत के लिए नहीं मांगा पसायदान उन्होंने, सारे विश्व के लिए मांगा है। और ये विश्व के लिए पसायदान जो मांगा है उसमें कैसे होगा, क्या होगा, ये उन्होंने अपने चिंतन में दिया है, उसका रोडमैप है। और ये रोडमैप जो है वो अगले पंक्तियों में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत क्या हो गई थी, आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसायदान हे। आप भगवान को कहते हैं, विश्वात्मक देव को माउली कहती है कि ये जो मैंने अभी तक ज्ञानेश्वरी के विवेचन किया, वाक यज्ञ जो, वाणी का यज्ञ जो रचा, उससे आप प्रसन्न हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए, और मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए। कैसा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, ओम शांति।
3: रेडियो मनभावन 90.8 एफएम प्रस्तुत योग सूत्र विवेचन माला, अध्यात्म, मनशांति आणि जीवन दर्शन यांचा सुरेख संगम, श्रीमद भगवत गीतेच्या संदर्भातून पातंजल योग दर्शनाचा सखोल प्रवास, पातंजल योग दर्शन अर्थात मनाचे शास्त्र या प्राध्यापक भगवत भरंबे लिखित ग्रंथाचं क्रमशः वाचन, वाचक स्वर योगाचार्य डॉक्टर देवानंद सोनार, संचालक सोहम योग अँड नॅचरोपॅथी, केसी सोसायटी संचालित मूजजेठा महाविद्यालय जळगाव। ऐकायला विसरू नका 1 जानेवारी 2026 पासून दररोज सकाळी 8 वाजता आणि पुनःप्रसारण दुपारी 4 वाजता योग सूत्र विवेचन माला आपल्या रेडिओ मनभावन 90.8 FM वर। ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर स्वागत करते हैं आप सबका। हैप्पीनेस इंडेक्स की इस श्रृंखला में बहुत सी बातें सामने आई हैं, और अगर पिछली कड़ी को देखें तो याद आता है कि हमने बात की थी कि क्या एंटरटेनमेंट खुशी दे रही है। हम अभी तक ये सोचते थे कि हम टीवी जो देख रहे हैं या फिल्म देखने जाते हैं या किताब पढ़ लेते हैं वो हमें एंटरटेन करती है कुछ टाइम तक, मेरे थॉट्स जो मुझे तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे मुझे दूर ले जाती है, मैं किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। लेकिन फिर ये बात समझ में आई थी कि क्यों कहा जाता है कि टीवी देखना या फिल्म देखना एक एडिक्शन बन सकती है, क्योंकि जैसे ही हम जो वहाँ सिचुएशंस हो रही थी उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं, उन्हें अपना थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसे चूज करने का हक उनको दे देते हैं। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात थी, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, एक्सपीरियंस करते जाएंगे, हमें समझ में आता जाएगा। आज थोड़ा इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि हाउ डज इट रियली वर्क। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, इट्स लाइक अगेन आई कैन अंडरस्टैंड नाउ व्हाई पीपल से कि आप रोज हमारे साथ ड्राइंग रूम में होते हैं, बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इट्स अ जर्नी। और हर बार हमारा जो अनुभव है, हम बात यहाँ कोशिश करते हैं समझें, फिर उसे जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो एक रिकैप लेना चाहेंगे आपके साथ कि व्हाट रियली हैपन्स जब मैं किसी भी टीवी के प्रोग्राम में या फिल्म में या नॉवल में इन्वॉल्व हो रहा होता।
1: Yeah, it's not that we're not trying to say के हम ये नहीं देखें। Fundamental, of course, हम choose करें क्या हम देख रहे हैं, क्योंकि information तो अंदर feed हो रही है। सिर्फ अब ये ध्यान रखें देखते हुए भी कैसे देखें। You know, and it's applicable both the places। जैसे movie को या TV को देखते हुए कैसे देखें, और वही चीज़ फिर आपकी practical day-to-day life में आएगी कि ये जो ड्रामा सारा दिन, इसको भी हम ड्रामा ही कहेंगे। माई जर्नी ऑफ लाइफ इज अ ड्रामा। वाई इज इट अ ड्रामा? बिकॉज एक सीन के बाद दूसरा सीन विथ सो मेनी एक्टर्स इन्वॉल्व। तो दोनों तरफ हमें ये सीखने को मिलता कि ड्रामा की हर सीन को कैसे देखें। तो जब हम मूवी देखते या टीवी देखते, जस्ट वॉच योर सेल्फ। अगर आप हाफ एन आवर का सीरियल देख रहे हैं या 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं, सिर्फ आज शाम को अगर आप कुछ देखें तो उसको देखते हुए अपने मन को बीच बीच में देख लेना कि वो कैसे कैसे।
0: एक्चुअली आई वॉन्ट टू शेयर व्हाट हैपेंड टुडे। मैं जब आ रही थी तो पहले मैं कुछ अपना सोच रही थी, ड्राइवर ने गाना चला दिया, वो मेरा सबसे फेवरेट गाना था। एकदम से मुझे स्ट्राइक किया, मैं गाना सुनने लग जाती हूँ तो मेरा थॉट खत्म हो जाता है। लेकिन मैंने इस बार चाहा कि नहीं, मैं जो सोच रही थी वो करती रहूं, बट उसकी अट्रैक्शन इतनी थी गाने की, गानों के शब्दों की। और तब मैंने देखा कि गानों के शब्द ना सिर्फ मुझे इन्वॉल्व करते गए बल्कि वो इमोशन भी क्रिएट होने, क्योंकि मैं देख पा रही थी, हम इस पे बात कर चुके थे इसलिए। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वो इमोशन तक नहीं जाना, मुझे वापस आना है अपने थॉट पर मेरा मन नहीं था आने का मेरे को, क्योंकि उसमें एंजॉयमेंट मिल रही थी।
1: स्टिम्युलस था ना, वो एक स्टिम्युलस था जो मेरे अंदर वो इमोशंस क्रिएट कर रहा था। क्या होता, हैप्पीनेस या पेन, दोनों चीज हॉर्मोन्स तो सिक्रीट करती है ना बॉडी के अंदर, एंड द माइंड नीड्स दैट क्रेविंग, बट द बॉडी ऑल्सो नीड्स दोज हॉर्मोन्स। तो इफ आई एम वेरी वेरी स्टेबल, अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, दिस ऑल्सो डिवेलप्स धीरे धीरे ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन मेरी बॉडी की कुछ वो होती है, एडिक्शंस होती है, वो हॉर्मोन्स की मुझे आदत पड़ी हुई है, तो मुझे कुछ ऐसा बाहर से चाहिए होता है स्टिम्युलस, कि वो स्टिम्युलस आएगा, वो स्टिम्युलस मेरे अंदर वो इमोशंस क्रिएट करेगा, और जैसे ही वो इमोशंस क्रिएट होंगे मेरे बॉडी के अंदर भी वो हार्मोन सिक्रेट होंगे एंड आई फील गुड, जैसे कि मुझे वो चीज़ मिल गई जो वो चाहिए थी। फिर इवन भले वो दर्द के ही यू नो इमोशंस हो, वो एड्रेनालिन सिक्रेट हो, लेकिन वो सिक्रेट हुआ ना, वो बॉडी को जो चाहिए था वो सिक्रेट हुआ, आई फील गुड एंड देन आई से दिस इज एंटरटेनमेंट। यू नो ये मुझे चाहिए, दिस मेक्स मी फील गुड, इवन इफ आई हैव क्राइड फॉर हाफ एन आवर, हाउ कैन आफ्टर क्राइंग यू फील गुड अदरवाइज? तो कोई लॉजिक ही नहीं। आप आधा घंटा पिक्चर देखा, आप कितनी बार रोए उसके साथ, यहाँ तक कि आपने हैंकी तक निकालना पड़ गया, एंड देन वी से आई फेल्ट गुड आफ्टर वॉचिंग द मूवी। वॉट फेल्ट गुड? समवेयर दोज इमोशंस गॉट क्रिएटेड, द बॉडी सिक्रेटेड व्हाट इट हैड टू डू, एंड आई वॉज लाइक ओके दिस इज वॉट इज माई नीड। जैसे ड्रग्स है, डैमेजिंग है, लेकिन बॉडी को आदत पड़ गई है ना, तो जब तक बॉडी लेती नहीं है उस चीज को,
0: फील गुड
1: लेना उसको अनकंफर्टेबल लगता है। तो इसी तरह अगर मुझे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम से वो स्टिम्युलस मिलता है, देन धीरे धीरे धीरे आई स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि ये तो मुझे देखना ही है। अगर आज मैं पहुंच नहीं पाई टाइम पर, या वो लाइट नहीं है घर में, एंड वो प्रोग्राम नहीं आ रहा, या आई विल फील वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। सो दिस इज लाइक जिसको किसी को वो नहीं मिला जो उसको उसकी आदत होती है। जैसे आपने वो सॉन्ग के साथ किया, नेक्स्ट टाइम हम सभी एक्सपेरिमेंट इसको करके देख सकते हैं कि जब हम कुछ देख रहे हैं, पहले जब हम बैठते हैं जस्ट देखने के लिए, आर माइंड इज क्वाइट स्टिल, यू नो. इनफैक्ट पहले तो आर माइंड इज विद अदर थॉट्स. सो दिस इज अबाउट वॉचिंग आर माइंड. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे ही हम आकर बैठे टीवी के सामने, पहले थोड़ी देर मेरे मन में कुछ और चल रहा है जो मैं छोड़कर आया हूँ, अभी ऑफिस का काम या घर का. धीरे धीरे वो थॉट्स खत्म हो जाती हैं एंड यू विल एक्सपीरियंस अ लिटिल स्टेज वेयर यू आर इन, यू नो, नॉट टू मेनी थॉट्स. दिस माइंड इज बिकमिंग साइलेंट क्योंकि ये वो वाली जो बातें लेकर आया था घर, वो बातें तो खत्म हो गई. तो ये माइंड थोड़ा थोड़ा स्टिल हो जाता है. ये जो स्टिलनेस की स्टेज है, ये है कि यू आर हियर, प्रोग्राम इज देयर एंड आप उसको डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह आप उस प्रोग्राम को देख रहे हैं. उसका इफेक्ट मुझ पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत थोड़ी देर रहता है. धीरे धीरे हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आती, वो आती है कि हम जजमेंटल होना शुरू करते हैं. ऐसे क्यों बोल रहे हैं ये, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे व्हाटएवर आवर ओपिनियन.
0: देखा उसने ऐसे किया तो अब ऐसा ही होना चाहिए. अब व्हाट नेक्स्ट,
1: इवन इन द क्रिकेट मैच ऐसे क्यों,
0: ये बॉल
1: यू सी. सो द सेकंड स्टेज बिकम्स जजमेंटल कि हम अपना ओपिनियन चाहते हैं कि दैट इज हाउ इट शुड, ऐसे करते तो. इवन द एक्टर्स क्लोथ्स, द सीन, व्हाटएवर, एवरीथिंग. आई स्टार्ट बिकमिंग जजमेंटल. जैसे ही हम जजमेंटल शुरू हुआ, मतलब क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन मार्क की सीरीज में गए, ये जो स्टिलनेस थी वो क्या हो गई,
0: वो खत्म हो गया.
1: बिकॉज वो माइंड ऐसे ऐसे, ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, ऐसे. तो द माइंड स्टार्ट्स गेटिंग डिस्टर्ब्ड. वो स्टिलनेस हमारी खत्म हो गई. सो दिस वाज द सेकंड स्टेज. द थर्ड स्टेज जो आती कि हम उस कैरेक्टर की स्टोरी के अंदर ही
0: इन्वॉल्व हो जाते,
1: पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं. एंड दैट स्टेज विल बी कि वो कैरेक्टर जो इमोशन वहां एक्सपीरियंस कर रहा है, वो इमोशन आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग हियर. तो फिर आई एम टोटली इन द स्टोरी, लाइक पूरी तरह से. देन आई हैव नो अदर थॉट एंड देन आई, माय क्रिएटिविटी इज ओवर बिकॉज नाउ आई एम ओनली क्रिएटिंग व्हाट दे आर क्रिएटिंग. मेरी अपनी अब कोई नहीं रह गई.
0: मेरे पहले तो मैं कर रही थी, वैसे
1: उससे पहले
0: जजमेंटल जब मैं हो रही थी.
1: पर जैसे जजमेंटल हुए तब क्या हुआ, क्रिएटिविटी नहीं थी. जैसे ही आप जजमेंटल होते हैं, आपकी एनर्जी तो उल्टा खत्म होने लगती है क्योंकि आप किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. आई कैन सिट अक्रॉस द टेलीविजन एंड कीप ऑन सेइंग व्हाट आई वांट टू से. मैं कितना भी जजमेंटल हो सकती हूँ, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट. मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ सामने से बैठकर और मैं कहूँ ये नहीं पहनना चाहिए था, ये पहनना चाहिए था, ये सेट ऐसा नहीं, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट. नो, आई एम थिंकिंग ऑफ दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट इन
0: बट माय कंट्रोल. बट आई हैव अ राइट टू हैव माय ओन ओपिनियन. दैट्स ओके,
1: दैट्स फाइन, यू हैव अ राइट. लेकिन आप बस बैठे हैं और यहाँ आपका माइंड कंटिन्यूसली वो थॉट्स क्रिएट कर रहा है उन चीजों के बारे में जो आपके कंट्रोल में नहीं है. यूजफुल एनर्जी?
0: No, it can't be. Yes.
1: Useful energy?
0: Actually, I know, it's of no use.
1: It's a drain. ये आपका drain शुरू हो गया, कि जो वो stillness थी, वो आपका drainage शुरू हो गया, क्योंकि आप एक एक वो thought create कर रहे हैं जो आपके control में.
0: Actually, और इससे मुझे आदत भी पड़ती जाएगी.
1: Exactly. यही चीज तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आएगी ना, डे टू डे.
0: हर एक को, oh yes.
1: Yeah. जो आपने कहा, do I not have the right to have an opinion? Yes.
0: So then I'll have my right with
1: सारा दिन पे. ये बिल्कुल सेम चीज फिर रोज के ड्रामा में होती है ना. दैट्स व्हाट वी सेड, जो टेलीविजन के ड्रामा के साथ पहले प्रैक्टिस होती है, वही चीज फिर हैबिट बन गई, तो वही चीज फिर मेरे डे टू डे लाइफ में आती है. सो वी वेंट थ्रू दीज थ्री स्टेजेस, पहले स्टिलनेस, फिर जजमेंटल एंड तीसरा तो पूरी तरह से इन्वॉल्व. एंड जब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई, तब तो अपनी थॉट क्रिएट करने की मेरी अपनी कैपेसिटी है वो भी भूल गया. मेरी थॉट की पावर मैंने टोटली उस प्रोग्राम को दे दी. नाउ दिस, because I'm doing every day, it's not ki I'm watching a movie just once in a while ya main TV dekh rahi hu once in a while, nahi, hum roz kar rahe hain. To koi bhi cheez jo roz karenge,
0: well, of course
1: wo ban gayi meri habit. Ab jo humne pichli baar bhi dekha ki agar gussa office mein sirf kar rahe hain ye soch ke ki gusse se kaam hota, lekin wo meri agar ban jati hai habit, to wo habit mere sath
0: har jagah meri personality banti. Yes, now I understand it actually.
1: Ab ye tha, शुरू किया था जब बैठकर देखना, मैं एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर, एक साक्षी दृष्टा थी, लेकिन आधे पौने घंटे के अंदर अंदर मैं उस ड्रामा के अंदर पूरी तरह से घुस गई. अब यही चीज फिर सारा दिन होती, क्योंकि अब मुझे हैबिट पड़ गई है. अब धीरे धीरे तो वो साक्षी दृष्टा होना कैसे वो ही हमें आज नहीं पता चलता. और इसलिए आज हमारी वोकैबुलरी ये हो गई है कि अटैचमेंट तो नेचुरल है, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट कंफर्टेबल नहीं लगता. लोगों को बहुत कोल्ड लगता है कि हम बहुत स्टिल हैं, हम बहुत डिटैच्ड हैं, हमारे ऊपर असर क्यों नहीं पड़ रहा. लेकिन ये जो असर पड़ने का, प्रभाव पड़ने की आदत जो पड़ी थी वो इससे पड़ती है.
0: वो कंटिन्यू. इनफैक्ट अगर हम देखें, वो जब अभी हुआ था, जब मुंबई का जो अटैक हुआ था, तो उसमें मुझे कितने दिन तक, 2 दिन लगातार चला था, हम पूरा टाइम डिस्टर्ब्ड रहे थे.
1: लेकिन अब इसको ही अगर आप देखो, जो न्यूज में अगर कोई यस एक इंसिडेंट हुआ है, एब्सोल्युटली के वो नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है बात, लेकिन जब हम उसको 24 घंटा हर रोज स्ट्रेच करते हैं, और उसमें हम करते क्या है, किसी के साथ कुछ हुआ, हम उसी को लेकर वो रोते हुए को बार बार दिखाएंगे, बार बार उसको पूछेंगे आपको कैसा फील हो रहा है. समवेयर वी आर यूजिंग इमोशंस एंड द अदर पर्सन फीलिंग टू सेल इट इन टू द मार्केट. और क्यों? क्योंकि हम फील करते हैं कि ये लोग देखना चाहते हैं. दिस साउंड्स वेरी harsh, this sounds very harsh, but it is the truth. हमें लगता है कि ये रहम है, actually नहीं, उनको रहम नहीं चाहिए, उनको compassion चाहिए, उनको love चाहिए. लेकिन love नहीं है. अगर हमने भी pain create किया कुछ भी ऐसा देखकर, जब ये पूरा terror attack हुआ, तो what was the information that was being flooded everywhere? कि आप सबको गुस्सा होना चाहिए इस बात को लेकर. Why are you not angry? People should get angry. वही तो solution है. How can anger be the solution to anger? जिन्होंने जो किया, that was a sign of anger, resentment. Already उस शहर के अंदर जो वातावरण फैल चुका था वो दर्द का था. बहुत लोगों की जीवन ऊपर नीचे हो गई थी, बहुत लोग डर में थे, अपने अपने घरों में ट्रैप्ड थे. इन एन एनवायरमेंट जहां ऑलरेडी इतना पेन है, इतना दर्द है, We're trying to say get angry.
0: नहीं, and in fact वही बात कर रही हूँ कि वो सिचुएशन, अगर हम जो हम जिस मुद्दे पे थे, उस सिचुएशन ने जो कहीं और हो रही थी, उसने पूरी तरह से पूरे जो वॉच कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, उन सबके माइंड्स को कैप्चर ही तो कर लिया.
1: Yeah, but not even see, अगर हम देख भी रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद मेरे माइंड में इमिजिएटली ये आना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. I'll tell you a very beautiful thing that happens at the Brahma Kumaris. We're not saying ki ye hona chahiye ajoy. Something very, very nice that happens here is ki jab bhi duniya ke kisi bhi hisse mein kuch bhi ho jata hai, thoda bhi upar niche, chahe wo natural calamity hai ya wo kuch aisi baat hai, immediately, everyone knows this, har center par, jitne bhi hum sare bhai behne hain, we have collective meditation. हम सब इकट्ठे मिलकर, अलग अलग अपने अपने रीति से घर पर तो करते हैं, लेकिन कलेक्टिव टाइम फिक्स करके हम सब सेंटर पर बैठते हैं, और सेंटर पर इकट्ठे मिलकर वी क्रिएट वाइब्रेशंस ऑफ पीस, लव एंड पावर. क्योंकि भगवान परमात्मा हमेशा ये कहते कि दर्द तो ऑलरेडी है. आप दर्द के बारे में चर्चा करते हो, दर्द की खबरें सुन रहे हो और दर्द क्रिएट कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस टाइम? Don't just see it as a stimulus. See what is my responsibility now. तो वहाँ दर्द है, हमें क्या भेजना? हमें प्यार भेजना, हमें शांति भेजनी. लेकिन वो कब भेज पाएंगे? जब हम detached हैं. लेकिन अगर मैं ही दर्द में चली गई, हाय क्या हुआ, कैसे हुआ, तो where is the power?
0: और in fact unknowingly मैं दिए ही जा रही हूँ, भेजी जा रही हूँ.
1: हमें लगता है कि ओ मैं तो दिल्ली में बैठी हूँ, ट्रेजेडी तो बॉम्बे में हुई, बट इट्स नॉट ट्रू, इट्स कलेक्टिव वाइब्रेशन.
0: डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन जब अगेंस्ट चीजें हो रही हैं सोसाइटी के नॉर्म्स के, ह्यूमन काइंड के, तो हम ही तो हैं, इंसान ही तो हैं जिन्होंने अपनी वॉइस भी रेज करनी है. तो अगर हम स्टेबल होके देख रहे हैं या मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को, इजंट इट बीइंग नॉन रिएक्ट, आई एम नॉट डूइंग थिंग्स,
1: you become very passive.
0: Yes, you know, like मतलब आप बहुत स्लो हो जाते हैं. आपको अपनी बात कहने का भी तो वो जरिया चाहिए.
1: Absolutely. लेकिन अपनी बात कहने का जो तरीका है, एक तो वो मैटर करता, और दूसरी अपनी बात कहने के लिए पहले आपकी सोच में तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए ना. जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, सी एंगर, पेन, हर्ट, उस टाइम जो हम जिस अटैक के बारे में बात कर रहे हैं, जो 3 फंडामेंटल इमोशंस बहुत हैवी थे, एंगर, पेन, हर्ट, रिजेंटमेंट, एंड स्पेशली वो पूरी, यू नो, एक पूरा एक फ्लेवर जो क्रिएट हो गया हर जगह, इट वॉज दीज 3. जब हम इन तीनों इमोशंस के वशीभूत हैं, ये डू वी हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्या हम उस समय राइट सोच पाएंगे, राइट बोल पाएंगे? अब इसी स्पेसिफिक बात को भी अगर हम देख लें, जितने दिन वो न्यूज़ में था, हम देख रहे थे क्या हो रहा है, सो वी वर ऑल्सो यू नो एवरी वन इज़ वेरी एंग्री, एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट, किया हमने क्या इज अ क्वेश्चन मार्क, हमने क्या किया अपने देश के लिए?
0: कलेक्टिव एंगर जो था,
1: कलेक्टिव एंगर था, कलेक्टिव एंगर का रिजल्ट,
0: अगेन यू नो दिस इज व्हाट पीपल हैव सीन.
1: सी इफ यू वांट टू वॉइस योर ओपिनियन, ऑल द मोर यू रिक्वायर स्टेबिलिटी. वी थॉट के एंगर एंड रिएक्शन, हमारी आवाज ज्यादा, यू नो जैसे नॉर्मल भी, वो तो बड़ी बात है, छोटी बात पे ऑफिस में भी हम देखेंगे या घर पे भी, कि मैं जोर से चिल्लाकर बोलूंगा ना तो आपको ज्यादा ठीक से समझ में आएगी. सी द थिंग इज, फर्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन यू, कि आप जो इमोशंस क्रिएट करते हैं उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट, फिर कलेक्टिव सब लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट, फिर उसका एंड रिजल्ट. इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, हमने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ उसके बारे में जितने दिन वो न्यूज़ में था, हम भी न्यूज़ के साथ थे, हम भी उसको यू नो ऑफिस में भी वही बात हो रही है, घर में भी वही बात हो रही है, हमने किया क्या? 10 दिन 15 दिन, आई थिंक दैट्स अबाउट इट ऑल. उसके बाद न्यूज़ चेंज हो गई, कोई और चीज हो गई दुनिया के किसी और कोने में,
0: पब्लिक मेमोरी बहुत छोटी होती
1: है, हम उसके बारे में बात करने लगे. जिनके जीवन पर उसका इफेक्ट हुआ, जो आज दर्द में है, वो तो आज भी दर्द में है, हमने उनके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया. हमने कंट्री के लिए क्या किया इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. हमने सिर्फ गुस्सा किया, व्हाट डज दैट रिजल्ट.
0: अच्छा, लेकिन
1: अगर सारे इकट्ठे होकर इफ वी हैव टू रियली डू समथिंग उसके लिए, क्योंकि टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, इवन कुछ करने के लिए पावर चाहिए. अगर हम अंदर से हर्ट हैं, गुस्से में हैं, हम वीक हैं, वीक अंदर से वीक होकर सिर्फ शोर मचाकर हम कोई परिवर्तन ले आएंगे, विल नॉट रियली वर्क. एंड वी नीड टू रिमेम्बर, वो करना, वो उस तरह से करना, धीरे धीरे मेरी क्या बनते जा रहा
0: है,
1: हैबिट बनता जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो क्या होता है कि हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वी नीड टू रिमेम्बर, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, डिटैच होकर देखें एंड तुरंत अपने आप से पूछें, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. सो दैट लाइक आई वाज शेयरिंग एट द ब्रह्मा कुमारीज, हम लोग कलेक्टिव मेडिटेशन करते कि हम सब बैठकर, और ये तब नहीं सिर्फ कि अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट होता, बट एवरी मंथ ऑल्सो. एक है कि एवरी डे हम शाम को जब मेडिटेशन करते, 6:30 to 7:30, हम दो बार मेडिटेशन करते हैं हर रोज दिन में, वन इज इन द मॉर्निंग, एंड ये हमने बहुत यू नो क्लियरली जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जैसे ये किया है कि मॉर्निंग में जो मेडिटेशन है वो है अपने ऊपर काम करने का समय, अपनी मेहनत, अपने संस्कारों को परिवर्तन. और शाम को जब मेडिटेशन करते, इट इज़ फॉर सर्विंग द वर्ल्ड. कि सुबह आपने मेडिटेशन किया, आपने अपने अंदर पावर्स भरी, शाम को आप मेडिटेशन करो एंड वो पावर्स जस्ट सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड, जस्ट सेंड इट आउट. Now when I came first to the Brahma Kumaris, I just didn't know how this works. ये कैसे होगा कि हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ create कर रहे हैं कुछ, and this is going out to the world. ये and for me it was a question mark कि इसका क्या फायदा हो सकता है, कि हम यहाँ बैठे हैं, वो किसी और देश में है, वो तो अभी भी दर्द में ही है, एंड ये ऐसी चीज है जिसका कोई तुरंत प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं पता चलता. कि यू नो जैसे we used to call this donation of peace and power. तो आई सेड धन डोनेट करो तो दिखाई देता, कपड़े डोनेट करो दिखाई देता, मतलब हमें ये नहीं कि फॉर एटलीस्ट आई कैन सी दैट आई एम गिविंग इट टू यू एंड यू आर टेकिंग इट, एंड आई सी कि आपको वो मिला जो आपको चाहिए था, लेकिन पीस डोनेट करो, वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, आई वुड नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. के बट नाउ व्हाइल आफ्टर डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स, आई हैव रियलाइज्ड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. हाँ, हमें उसका तुरंत वो नहीं पता चलेगा कि वो किस तक पहुंचा, क्या हुआ, लेकिन जब ये समझ में आ गया कि थॉट्स एनर्जी है और जो एक एक थॉट हम क्रिएट करते वो वाइब्रेशन है जो एनवायरनमेंट में फैलता है, पहले मुझे मिलता, मेरे आसपास जो है उनको मिलता, देन ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड कि एक एक थॉट जो हम क्रिएट करते वो वाइब्रेशन है, इट डजंट स्टे इन, इट रेडिएट्स, इट वाइब्रेट्स इन टू द एनवायरनमेंट. एंड वो जिनके प्रति भी क्रिएट किया गया होगा, क्योंकि दैट्स व्हाट वी हैव सीन एवरी टाइम, कि जो थॉट मैं आपके लिए क्रिएट करूंगी
0: आप तक जाएगा,
1: वो आप तक पहुंचेगा. तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, इट इज कॉन्शियसली क्रिएटिंग थॉट्स. यू नो वी डोंट रियलाइज, हम लोग आज सब बोल रहे हैं कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, एवरी वन इज टॉकिंग कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, कैसे आएगी? जब हम एक एक शांत रहेंगे तब ऑटोमेटिकली शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे, ऑटोमेटिकली शांति होगी. हम सब अशांत हैं और हम कहते हैं दुनिया में शांति होनी चाहिए. दुनिया मीन्स व्हाट? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड. हरेक जो हम हैं, हम सबकी मन की स्थिति क्या है, कलेक्टिव सबकी मन की स्थिति को अगर हम लें, वो दुनिया की स्थिति है. तो हम कहते हैं दुनिया में शांति हो तो मैं शांत हो जाऊंगा, यू नो, दुनिया सब ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं शांत होंगी तो दुनिया में शांति आएगी. तो नाउ वी आई कांट वेट कि पूरी दुनिया में सभी 600 करोड़ लोग जब शांत हो जाए तो दुनिया शांत होगी. लेकिन एक एक करेगा, एक एक क्रिएट करेगा वो पीसफुल वाइब्रेशन, तो दुनिया में तो आएगी. लेकिन सबसे पहले I will be peaceful, my family will be peaceful, where I'm working will be peaceful. तो ये जो हम meditation करते हैं, we do it every evening, 6:30 to 7:30, serving the world, sending out powers of peace, love and power. And specifically, every third Sunday of the month, ये तो fixed है, all over the world, every third Sunday of the month, 6:30 to 7:30, सभी भाई-बहने center पर आते. And it is called meditation for world peace. कि विश्व में शांति के लिए हम इकट्ठे मिलकर meditation करते.
0: In fact, you know, it's such a beautiful aspect कि it'll make me feel so good कि I'm doing it for the world. Yeah. You know, अभी तक तो सब कुछ, even program में भी हम अपने लिए कर रहे थे. You know, हर चीज हम पर focus हो रही थी. और कहीं ना कहीं वो जो ह्यूमन एलिमेंट ये होता है कि हम दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं. और हर बार हमारे को लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कुछ किसी का दर्द नहीं बांट सकते, कुछ नहीं कर सकते. सो दिस गिव्स मी सच अ गुड फीलिंग. एक्चुअली वी शुड ऑल ट्राई टू एक्सपीरियंस इट.
1: इन दिस केस इट इज कि जब आप कर रहे हैं किसी और के लिए, सबसे पहले किसको मिलता?
0: हाँ, खुद को मिलता
1: सबसे पहले. सी इफ आई डू समथिंग फॉर यू, इट्स फॉर यू. तो उसमें शायद हो सकता है मुझे कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन इसमें सबसे पहले मुझे मिलता और फिर मेरे थ्रू औरों तक पहुंचता. एंड जब हम देते हैं, दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग. लेना लेना सारा दिन ये तो बहुत ईजी है, लेकिन जो खुशी मिलती है जब हम देते हैं, दिस इज समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड. एब्सोल्युटली.
0: इन फैक्ट इट ऑलवेज हैपेंस, यू नो, हम कुछ भी जब देते हैं हमें अच्छा लग रहा होता है.
1: यू नो, गिफ्ट, जैसे गिफ्ट होता है, आई हैव टू आस्क मायसेल्फ, गिफ्ट देने में ज्यादा अच्छा लगता या गिफ्ट लेने में? इट्स ऑलवेज द गिविंग, अ गिविंग ऑफ अ गिफ्ट. आप चूज करने जाएंगे, आप लेंगे, यू ऑलवेज सो हैप्पी बिकॉज गिविंग इज ह्यूमन नेचर. लेकिन वो हम अपनी बेसिक नेचर को आज थोड़ा सा भूल गए हैं. एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग हैप्पीनेस, गिविंग लव, गिविंग पीस, वी आर wanting happiness, asking for love, asking for peace. So let's experiment this meditation together.
0: In fact, Sister Shivani, हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि जो impact था आज इस पूरी बातचीत में, ये तो समझ में आया कि क्या process है, क्या कुछ कैसे होता है, जो जिससे हम हमारा जो पूरा जितनी देर हम टेलीविजन के आगे होते हैं, क्योंकि ये जो हमने एग्जांपल्स लिए उसमें भी तो यही हुआ, जितने दिन तक वो टीवी पर दिखते रहे, जितने दिन तक वो चर्चा में रहा, उतने दिन तक वो हम पे हावी रहा, उसके इमीडिएटली बाद हमें याद भी नहीं रहा,
1: कुछ और आ गया ना तब.
0: हाँ, सो इट मीन्स इट टुक ओवर ना.
1: सो दैट मीन्स मेरी अपनी क्रिएटिविटी क्या थी. इफ यू रियली फेल्ट फॉर व्हाट हैड हैपेंड, तो टीवी से वो हट भी गई न्यूज, आपकी फिर भी वो रहना ही चाहिए थी ना, वट एवर यू थॉट, वो तो इट्स फिनिश्ड. सो इट्स नॉट रियली दैट यू फेल्ट इट, इट इज समवन एल्स वाज क्रिएटिंग योर इमोशंस फॉर यू दैट टाइम, एंड वो समवन एल्स चेंज्ड द टॉपिक, तो हमारा भी चेंज.
0: तो हमारी रैशनैलिटी खत्म हो चुकी होती है एक्चुअली.
1: वही, दैट्स व्हाट वी सेड, हमारी क्रिएटिविटी कि कौन सी थॉट्स क्रिएट करनी है, चूज करनी है, इट्स ओवर.
0: तो वी अंडरस्टूड कि शुरुआत में क्या होता है, देयर इज अ स्टेज वेयर वी आर स्टेबल, वी आर डिटैच्ड, हमने जो पूरा प्रोसेस देखा, और उसके बाद हमारा जो you know, लोगों के ऊपर जो जजमेंटल होना कि ये ऐसा किसी भी चीज़ के लिए, एंड देन पूरी इमोशंस हमारे जो टेक ओवर करती है. ये तीन प्रोसेस हैं जब हम किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, बाहर ही किसी भी, और ये फिर मेरी हैबिट बनता जाता है, जजमेंटल होना, और फाइनली फिर उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी होने देना. इनसे अब काम कैसे करना, हम टेलीविजन के प्रोग्राम से ही जुड़े हुए चीज़ें करेंगे, सो दैट, क्योंकि आप इस प्रोग्राम से भी जुड़े हुए हैं, तो उसको भी अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको कम ना होने दें. यू नो, आपको जो समझ में आ रहा है, जो एक्सेप्ट, मतलब आप ब्लाइंड, बार बार हम ये कहते हैं कि ब्लाइंड फेथ ना रखकर, इसीलिए अनुभव की बात कही जाती है,
1: एक्सपेरिमेंट.
0: हाँ, कि आपका एक्सपेरिमेंट और फिर आपका एक्सपीरियंस जो होगा उसके साथ वो कैसा होगा, वही आपको तय करवाएगा. आपके मन में कोई बात आ रही है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें फोन भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9973446 9873666 हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज हमने मेडिटेशन के उस एस्पेक्ट को भी समझा जो कलेक्टिव होती है और जो सिर्फ मुझसे जुड़ी नहीं हो सकती, लोगों से भी जुड़ सकती है, विश्व से जुड़ सकती है। तो आज सर शिवानी चलते चलते चाहेंगे कि थोड़ा सा अनुभव वो करें।
1: आज दिन तक हमने मेडिटेशन किया, आज उसमें एक नया एस्पेक्ट देखते कि हाउ आई कैन क्रिएट वाइब्रेशंस ऑफ पीस एंड सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड। तो इसमें कोई हमें स्पेसिफिकली लोगों के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन आई क्रिएट वो शांति की संकल्प, वो अनुभूति, एंड देन आई सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड। डोंट सिट एंड थिंक कि वो किस तक पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा, नहीं, जस्ट सेंड इट आउट विद द प्योर फीलिंग एंड अ प्योर इंटेंशन एंड इट विल रीच आउट टू देम। लेट्स सिट कम्फर्टेबली, बाहर की रोजमर्रा की बातों से अपनी बुद्धि को हटाते हुए अपने ऊपर लेकर आते हैं। आई दैट पावरफुल बींग जो हर संकल्प क्रिएट करता है, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, आई एम अ पीसफुल बींग। शांति मेरा अपना स्वभाव, मेरी अपनी नेचर है। ये शांति की वाइब्रेशंस, ये शांति की शक्ति मुझसे निकलकर सारे विश्व तक पहुंच रही है। देखने का प्रयास करें वाइब्रेशंस ऑफ पीस, इट्स लाइक अ लेजर बीम, मुझसे निकल सारे विश्व तक पहुंच रही है, विश्व की एक एक आत्मा तक पहुंच रही है। ओम शांति,
0: ओम शांति। थैंक यू सो मच। अब आपसे भी विदा लेंगे, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि आने वाली कड़ियों में बहुत सी और बातें हम समझ पाएंगे। ओम शांति।

0: कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन आत्मा आणि रेडिओ वत्सगुलम द्वारा प्रसारित कृषी कार्यक्रम श्रृंखला ऐकत रहा रेडिओ वत्सगुलम 90.8 FM वर आवाज वाशिमचा वाशिमचा।
1: किसानों की बात रेडिओ वत्सगुलम के साथ हा शेतकरी बांधवांसाठीचा कार्यक्रम रेडिओ वत्सगुलम ने प्रसारित केला। आमची यानंतरची उद्घोषणा काही क्षणातच।
2: आपण ऐकत आहात रेडिओ मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।